0: प्रकांत सिंह।
1: कलाम रोड हरगोसाबाद नरसिंह नगर पंजाब सु अपार साथे जुड़िया है। सुरेंद्र संधु, अनीता, रोहित, रितेश, प्रियंक और मैक्स।
0: भैरव सागर ओसियां सु फरमाइसली कन्वेजी है मोहनलाल, मुल्ताना राम, अशोक, खेमा राम, रोहित, नितिन और दिनेश।
1: ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद सु अपार साथे जुड़िया है सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे, संचित, प्रथेश, प्रणाली, सर्वद, सानवी, कल्पना और यहाँ सगला परिवार वाला।

0: साथरा टाइम रो पूरा हो रो है आज रे कार्यक्रम में प्रस्तुति की नहीं राजेश इस्लाम रोड आप रे सागे में दो रेडियो साथी है मेरा नाम है देवी सिंह
1: मैं आप रेडियो साथी रघुवीर सिंह।
2: अभी आप सुन रहे थे युवाणी, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए अब सुनते हैं पहले हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इसे हम रिले करेंगे।
3: मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने ये विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत हो जाएंगे।
4: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
3: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है, इससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर अब 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में यह घटकर 24% रह गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बात की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कर दी जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस MK2 के डिजाइन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा कि सारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाता है और देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया हल्का परिवहन विमान है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि अब तक देशभर के 23 करोड़ से ज्यादा लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ चुके हैं। इनमें 7,81,00,000 से अधिक युवा, 5,24,00,000 महिलाएं और 17,00,000 से अधिक शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1,677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। निफ्टी 517 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर दर्ज हुआ। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि ये पहल

0: FIFA World Cup has been finalized. France, Morocco, Norway, England, Spain, Belgium, Argentina and Switzerland have booked their places in the last eight. And with that, we end this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में आइए सुनते हैं हमारी आज की और कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय।

आज रात 9:30 पर आप सुन सकते हैं चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इसे हम रिले करेंगे।

शाम 7 बजे सुनिएगा किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल और 7:30 का वक्त रहेगा सीमा डेरी गूंज कार्यक्रम का। रात 9:15 पे आप सुन सकते हैं साहित्य सुधा के अंतर्गत कहानी पीड़ा। कहानीकार हैं डॉक्टर सुषमा चौहान। शास्त्रीय संगीत का वक्त रहेगा आज रात 10 बजे से। कुछ फिल्मी नगमों का आनंद लीजिएगा आज रात 8 बजे।

ये थी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। और आइए अब सुनते हैं हमारी कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम और उनका भी प्रसारण समय। कल सुबह 6:05 पर आप सुन सकते हैं श्री राम चरित मानस और भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन सुनिएगा कल सुबह 6:15 पर। कुछ बातें कुछ गीत ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं कल सुबह 7:00।

नमस्कार का वक्त रहेगा कल सुबह 8:30 पर। कल इसमें सुनिएगा सजीव भेंटवार्ता पन्ना राम SI SHO फालना पाली से गुलनाज खान और कविता पवार की बातचीत। विषय रहेगा साइबर अपराध की नवीनतम प्रवृत्तियां और डिजिटल युग में सुरक्षित रहने के उपाय। प्रस्तुति एवं संयोजन रहेगा राजेश लामरोड का। लोक संगीत का आनंद आप ले सकते हैं कल सुबह 10 बजे और दोपहर 12 बजे। सुगम संगीत सुनिएगा कल सुबह 10:30 पर, दोपहर 12:30 पर और रात 9:15 पर। कृषि जगत का वक्त रहेगा कल दोपहर 1:05 पर और महिलाएं अपना कार्यक्रम नारी वाटिका सुन सकती हैं कल दोपहर 1:15 पर। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा कल दोपहर 2:30 पर। युवाणी युवा श्रोता अपनी पसंद का कार्यक्रम सुन सकते हैं कल शाम भी हमेशा की तरह 5 बजे। किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल का वक्त रहेगा कल शाम 7 बजे और 7:30 पर आप सुन सकते हैं सीमा डेरी गूंज कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं समूह स्वरों में देश का।

0: का सूर्य नगरी चैनल है। आइए अब सुनते हैं संस्कृत में समाचार। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इसे हम रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः इण्डोनेशियादेशस्य योग्यकर्ता नगरे यूनेस्को वैश्विक सांस्कृतिक अभिलेख स्थलस्य प्रम्बानन मन्दिरस्य ऐतिहासिकं भ्रमणम् प्रतिपादितं यत् मन्दिरस्य संरक्षणे भारतस्य सहभागिता द्वयोः देशयोः सांस्कृतिकन्यासं प्रकटीकरोति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः जलाप्लावितेन प्रभावितानां राज्यानां मुख्यमन्त्रिभिः साकं दूरभाषेण सम्भाषणं विधाय केन्द्रसर्वकारपक्षतः सम्भाव्य सर्वविध साहाय्यस्य आश्वासनम् अयच्छत्। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागानुसारं देशस्य मध्य पूर्वीय भागेषु अतिवृष्टेः मेघगर्जनस्य च सम्भावना वर्तते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प उदघोषयत् यत् ईरान देशेन साकं युद्धविरामाय कृतं सन्धिज्ञापनं सम्प्रति समाप्तिपदम् एति। वैश्विक भूराजनैतिक चिन्तन प्रभावात् भारतीय शेयर विपणौ भीषण ह्रास। सेंसेक्स निफ्टी सूचकांकौ सार्ध द्विशतात्मिका अपचिति दृश्यते। अपि च फीफा विश्वकप पादकन्दुक प्रतिस्पर्धायां स्विट्जरलैंड दलेन कोलंबिया दलं पराभूय प्रागुपान्त्य चरणे अर्जेंटीना दलेन सह क्रीडा सुनिश्चिता कृता। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य इण्डोनेशिया देशस्य योग्यकर्ता नगरे संस्थिते यूनेस्को विश्व न्यास स्थले प्रम्बानन मन्दिर परिसरे इण्डोनेशिया राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियान्तो इत्यमुना साकं भ्रमणम् अकरोत्। तत्र पारम्परिक गैमेलिन संगीत ध्वनिभिः शास्त्रीय नृत्यैश्च प्रधानमन्त्रिणः अभूतपूर्वम् अभिनन्दनं विहितम्। नवमशताब्द्याः अस्य मन्दिर परिसरस्य अवलोकनावसरे प्रधानमन्त्रिणा मुख्य शिव मन्दिरे विशेष पूजार्चना कृता। सहैव भारत इण्डोनेशिया देशयोः सहयोगेन मन्दिरस्य संरक्षण प्रयासाः दृष्टाः। एकस्मिन् संयुक्त वक्तव्ये राष्ट्रपतिना प्रबोवो इत्यमुना प्रतिपादितं यत् प्रम्बानन मन्दिरं भारत इण्डोनेशिया देशयोः शतशः वर्षाणां प्राचीन सभ्यतायाः प्रतीकभूतं वर्तते। मन्दिरस्य पुनरुद्धाराय च तेन भारताय कार्तज्ञम् आविष्कृतम्। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यदियं यात्रा अतीव आध्यात्मिकी अविस्मरणीया च अजायत। द्वादशशताब्दैः अस्य न्यासस्य संरक्षणाय श्रीमोदी इण्डोनेशिया जनेभ्यः धन्यवादं विज्ञापितवान्।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: जकार्तायाम द्विपक्षीय वार्तानंतरम प्रेषिते संयुक्ते घोषणापत्रे भारत इण्डोनेशिया देशाभ्यां सर्वविध आतंकवादस्य तीव्रा निन्दा विहिता। द्वयोर देशयोः नेतृभ्याम् अन्ताराष्ट्रिय नियमानुसारेण आतंकवादस्य सम्मुखं दृढ वैश्विक प्रयासस्य आह्वानं विहितम्। उभाभ्यां प्रमुखाभ्यां वैश्विक स्तरे प्रतिबन्धितानां आतंकवादिनां संघटनानां च विरुद्धं कठोर कार्याचरणाय बलम् प्रदत्तम्। उग्रवाद विरोधी सहयोगं च दृढीकर्तुं सहमति प्रकटिता। स्वस्य त्रिदेशीय प्रवासस्य द्वितीय चरणे प्रधानमन्त्री अद्यैव त्रीणि दिनानि यावत् ऑस्ट्रेलिया देशस्य मेलबर्न नगरं प्राप्स्यति। तत्र सः ऑस्ट्रेलिया प्रधानमन्त्रिणा एंथनी एल्बनीज इत्यनेन साकं तृतीय भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। अनेन साकमेव सः

0: चक्रे रात्रौ सार्धैकवादने फ्रांस देशस्य स्पर्धा मोरक्को देशेन सह भविष्यति इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:42 पर जिले की चिट्ठी और 6:47 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से इसे हम रिले करेंगे।
2: मंत्री नितिन गडकरी का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता और निर्माण कार्यों के निरीक्षण के लिए दिल्ली से कोटा तक सड़क मार्ग से दौरा। राज्य सरकार का इस साल वर्षा ऋतु में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। पौधा वितरण और रोपण का कार्य मिशन मोड पर। अलनीनो की चुनौती पर केंद्र सरकार अलर्ट। बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 2,25,000 क्विंटल का राज्य बीज भंडार तैयार। और राष्ट्रीय महिला आयोग ने श्रीगंगानगर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में संज्ञान लिया। 15 दिन में रिपोर्ट मांगी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़क की गुणवत्ता, एक्सप्रेसवे की सुरक्षा व्यवस्था और यात्री सुविधाओं की जमीनी स्थिति जानी। केंद्रीय मंत्री के साथ दिल्ली से एनएचएआई और मंत्रालय के आला अधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल भी रहा। उन्होंने एक्सप्रेसवे पर लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर चर्चा की। इस दौरान दुर्घटना संभावित क्षेत्र यानी ब्लैक स्पॉट्स की पहचान और सुरक्षा मानकों को और कड़ा करने पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरे में अलवर जिले के पिनान में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने श्री गडकरी से मुलाकात की। अलवर और दौसा के बाद केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी कोटा के लिए रवाना हुए। वे मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के पास बन रही दरा टनल का भी जायजा लेंगे। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उनके साथ रहेंगे। अब से कुछ ही देर पहले तीनों नेताओं ने बूंदी के लबान में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा जिले के खातोली में विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने करीब 71 करोड़ रुपए के कामों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें सड़क निर्माण, संपर्क मार्गों के विकास, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और पेयजल सुविधाओं से जुड़े काम शामिल है। इस मौके पर श्री बिरला ने कहा कि विभिन्न गांवों को जोड़ने वाली नई सड़कों और पुलियाओं की मरम्मत तथा संपर्क मार्गों से क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी। इससे आम लोगों का जीवन अधिक सुगम और सुविधाजनक होगा।
3: इस खातोली के जो सारा इलाका है, न रोड की समस्या रहेगी, न पीने के पानी की समस्या रहेगी, न बिजली की समस्या रहेगी। यहाँ की रोड सबसे हालत खराब हुआ करती थी, जो खराब है बरसात के बाद उसको युद्ध स्तर पर काम चलाकर उसकी रोड कनेक्टिविटी, पुलिया, पीने का पानी, बिजली, ये सारी सुविधाओं का जो बरसों से अभाव था वो अभाव भी पूरा करेंगे।
2: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने निवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। साथ ही पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और कुसुम योजना में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने आज डीग बाईपास निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। करीब 9.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क परियोजना पर 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस बाईपास के निर्माण से क्षेत्र में यातायात व्यवस्था अधिक सुगम और व्यवस्थित होगी। इस मौके पर श्री बेढम ने कहा कि बाईपास के बनने से तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे।
4: यह वर्षों पुरानी मांग थी कि नगर में जाम की समस्या से निजात मिले और बाईपास का निर्माण हो। 61 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये बाईपास, जिसका मिट्टी का काम पूरा हो गया है, इसका हमने शिलान्यास किया है। इसके अलावा करीब 2000 करोड़ के काम हमारी विधानसभा में चल रहे हैं, प्रगतिरत हैं और भविष्य में भी जो जो आवश्यकताएं हैं, हम जनता की अपेक्षा पर खड़े उतर के उनके विकास की योजनाओं को धरातल पर लाने का काम करेंगे।

0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल और वित्त मंत्री ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राज्य सरकार ने इस साल वर्षा ऋतु में 10 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए पौधों के वितरण और रोपण का कार्य मिशन मोड पर चलाया जा रहा है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में सचिवों की समिति की बैठक ली। इस दौरान विभिन्न योजनाओं, हरियालो राजस्थान अभियान और शहरी तथा ग्रामीण सेवा शिविरों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बालोतरा, बाड़मेर, झालावाड़, जयपुर और कोटा जिले पौधरोपण अभियान में अग्रणी है। मुख्य सचिव ने बताया कि शहरी सेवा शिविरों में अब तक 28,000 से ज्यादा पट्टे दिए जा चुके हैं। वहीं ग्रामीण सेवा शिविरों के जरिए 38 लाख से अधिक नागरिकों को फायदा पहुंचाया गया है। मुख्य सचिव ने ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों में किसी भी तरह की लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तैयारी और स्पष्ट रणनीति के साथ अलनीनो चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्रिय और सतर्क है। उन्होंने कहा कि जून महीने में कम बारिश के बाद अब जुलाई में स्थिति में सुधार आया है। इससे देश में कम बरसात वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निगरानी तंत्र पूरी तरह सक्रिय है। मानसून में देरी का सोयाबीन और कपास पर असर पड़ा है। किसानों को मक्का, बाजरा, मूंग और कम अवधि तथा कम पानी वाली फसलों की बुआई की सलाह दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि जून महीने में चलाए गए खेत बचाओ अभियान के तहत 1,24,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इससे 80 लाख से ज्यादा किसानों तक सीधे पहुंच बनाई गई। उन्होंने बताया कि बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,75,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार तैयार किया गया है, जिससे किसी भी स्थिति में बुआई प्रभावित न हो।
1: हमने 2-3 तैयारियों और की, एक तो बीज की कोई कमी ना रहे, और इसलिए हमने लगभग 2.25 लाख क्विंटल राष्ट्रीय बीज का एक रिजर्व भंडार रखा है कि कहीं अगर एक बोनी खराब हो गई, बीच में कहीं गैप ज्यादा हो गया बरसात में, तो बीज की कमी हमारे पास ना रहे, उसकी व्यवस्था भी की है। ऐसे समय किसान को पैसे की भी जरूरत होती, इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड जिन किसानों के पास नहीं थे वो बनाने का भी अभियान चलाया है। 30 जून तक जो 1,14,613 आवेदन प्राप्त हुए थे उनमें से 94,417 स्वीकृत करके उनके किसान क्रेडिट कार्ड बना दिए गए हैं। फसल बीमा योजना में भी किसान ज्यादा सम्मिलित हो, उसके लिए भी हम अभियान चला रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया दौरे के बाद आज ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री श्री मोदी का ये दौरा भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को नई दिशा देगा। श्री मोदी मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा और स्वच्छ ऊर्जा सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती देना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए हैं। भारत इंडोनेशिया साझेदारी मजबूत हुई है, साथ ही भविष्य का महत्वाकांक्षी एजेंडा तय किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने श्रीगंगानगर में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और मानव तस्करी मामले का संज्ञान लिया है। आयोग ने श्रीगंगानगर जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को 15 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने विशेष जांच दल SIT जांच का भी संज्ञान लिया है, जिसमें अब तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही बाकी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से पीड़िता से संबंधित वीडियो और सामग्री को तत्काल हटाने को कहा है।

0: देशभर में अब तक 23 करोड़ से अधिक लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ चुके हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि इनमें 7 करोड़ 81 लाख से अधिक युवा, करीब 5.25 करोड़ महिलाएं और 17 लाख से अधिक शिक्षण संस्थान शामिल हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इस अभियान के तहत नारकोटिक्स ब्यूरो, राज्य और जिला प्रशासन, पुलिस, गैर सरकारी संगठन और अस्पताल मिलकर देश को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को जोड़ना और सभी संबंधित पक्षों की गतिविधियों को एक साझा लक्ष्य के लिए एकजुट करना है, ताकि भारत को नशे की लत से मुक्त बनाया जा सके। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सलुम्बर जिले के जयसमंद क्षेत्र के देवपुरा में आज ग्रामीण सेवा शिविर लगाया गया। पोर्टेबल डिजिटल एक्सरे मशीनों से ग्रामीणों की जांच की गई। इस दौरान 10 लोगों में टीबी के लक्षण मिलने पर उन्हें उपचार के लिए चिन्हित किया गया है। मौसम विभाग ने आज जैसलमेर और बाड़मेर को छोड़कर प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट बताया है। बारा, झालावाड़ और कोटा में तेज बरसात का ऑरेंज, वहीं बाकी 33 जिलों में येलो अलर्ट है। कल सवाईमाधोपुर, कोटा और बारा में झमाझम बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, वहीं 31 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश की गतिविधियों में 10 जुलाई के बाद कमी आने की संभावना है। इस बीच आज अलवर, कोटा और बारा में बरसात हुई। भीलवाड़ा में भी दोपहर बाद गरज के साथ कुछ देर तेज बारिश हुई। दोहलपुर में सुबह से ही रिमझिम बरसात का सिलसिला बना हुआ है। उधर जैसलमेर में भीषण गर्मी और उमस का दौर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता और निर्माण कार्यों के निरीक्षण के लिए दिल्ली से कोटा तक सड़क मार्ग से दौरा। राज्य सरकार का इस साल वर्षा ऋतु में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। पौधा वितरण और रोपण का कार्य मिशन मोड पर। अलनीनो की चुनौती पर केंद्र सरकार अलर्ट। बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 2.25 लाख क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार तैयार। और राष्ट्रीय महिला आयोग ने श्रीगंगानगर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में संज्ञान लिया, 15 दिन में रिपोर्ट मांगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से झालावाड़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी जयपुर समाचार एकांश की ओर से तैयार किया गया है। अपनी प्राकृतिक संपदा के लिए मशहूर झालावाड़ जिला संतरे की खेती के लिए अपनी खास पहचान रखता है। खूबसूरत स्थापत्य कला से बने किले और महल यहां की अपूर्व सांस्कृतिक विरासत है। प्रदेश के दक्षिण पूर्व में बसा ये जिला इन दिनों मानसूनी रंगत में रंगा हुआ नजर आ रहा है। बरसात से कई इलाके तरबतर हैं, खेतों में नई फसल की तैयारी शुरू हो गई है और किसानों के चेहरों पर अच्छी उपज की एक उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ आज झालावाड़ जिले की चिट्ठी शुरू करते हैं। जिले में इन दिनों जन कल्याणकारी योजनाओं, ग्रामीण विकास, जल संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़े कई कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रशासन विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहा है। जिले में इन दिनों ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। ये शिविर 15 जुलाई तक चलेंगे। ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में आयोजित शिविरों में 22 विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। राजस्व संबंधी प्रकरण, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, स्वास्थ्य जांच, आयुष्मान कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पेयजल, बिजली, कृषि और अन्य विभागों के काम मौके पर किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने अधिकारियों को समय पर प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भवानी मंडी और झालरापाटन में जनसुनवाई और अटल जन सेवा शिविर भी आयोजित किए गए। इन शिविरों में लोगों ने राजस्व, पेयजल, सड़क, सामाजिक सुरक्षा, किसान सम्मान निधि और अन्य विभागों से जुड़ी समस्याएं रखी। अधिकारियों को सभी प्रकरणों का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से 3 दिन की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। बड़ी संख्या में लोगों ने

0: प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वहीं हाल ही में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाई गई। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाई और अभियान को सफल बनाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी जिले भर में सामूहिक योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित हुए। जिला मुख्यालय सहित सभी ब्लॉक और ग्राम पंचायतों में लोगों ने योगाभ्यास किया। आयुष विभाग ने नियमित योग अपनाकर स्वस्थ जीवन जीने का संदेश दिया। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अभियान के दौरान जल स्रोतों की साफ सफाई की गई, पौधरोपण के कार्यक्रम हुए, श्रमदान जन जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण का संदेश दिया गया और अभियान से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। विश्व पर्यावरण दिवस पर जिले में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक पेड़ लोकतंत्र के नाम अभियान के तहत अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों ने पौधे लगाए तथा उनके संरक्षण का संकल्प लिया। खेल संकुल में पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण पर प्रदर्शनी भी लगाई गई। इससे पहले झालरापाटन स्थित गोमती सागर और द्वारकाधीश मंदिर में प्रदेश में अच्छी वर्षा, कृषि समृद्धि और जन कल्याण की कामना के साथ विशेष पूजा अर्चना आयोजित की गई। इसमें जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने भाग लिया। उधर मॉनसून को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अधिकारियों को जल भराव वाले क्षेत्रों की निगरानी, साफ सफाई और आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, कैंसर और सिकल सेल जांच, टीबी जांच तथा आयुष्मान भारत योजना से जुड़े कामों को प्राथमिकता से आगे बढ़ाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यक्रम भी लगातार जिले में आयोजित किए जा रहे हैं। किसानों को प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और विभिन्न कृषि योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। साथ ही कृषि विभाग किसानों को समय पर तकनीकी मार्गदर्शन भी उपलब्ध करा रहा है। जिले में पेयजल, बिजली और सड़क संबंधी कामों की भी नियमित समीक्षा की जा रही है। संबंधित विभागों को आवश्यक सेवाएं समय पर उपलब्ध कराने और शिकायतों का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ झालावाड़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे री गुणवत्ता और बनाई चुनाई रा कामारो जायजो ले वनसारू दिल्ली कोटा ताई सड़क मार्ग सफर किन्नो। राज्य सरकार ई चौमासा माय 10 करोड़ पौधा रोपणो ते किन्नो। पौधा देवन और रोपण रो काम मिशन मोड माथे। अल नीनोरी चुनौती रो सामो करण सारू केंद्र सरकार सावचेत। बीजारी उपलब्धता तय करण बाबत 2.25 लाख क्विंटल रो बीज भंडार तैयार। और राष्ट्रीय महिला आयोग श्री गंगानगर माए नाबालिग टाबरी सागे यौन दुराचार रा मामला माए संज्ञान लीनो। 15 दिन माए रपट मांगी। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे रो दौरो किन्नो। वे सड़क री गुणवत्ता, एक्सप्रेस वे माथे हिफाजत री व्यवस्था और मुसाफिरा रा सुविधाओं जुड़िया हालात रो जायजो लीनो। केंद्रीय मंत्री दिल्ली भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और मंत्रालय रा आला अहलकारा सागे दौरो किन्नो। वे एक्सप्रेस वे माथे सड़क हादसा री तादाद माए कमी लावन रा उपाया रा बारा माए चर्चा कीनी। इस दौरान हादसा री शंका वाली ठोड़ा री पिछाण और हिफाजती मानका री पालना और कड़ाइयों करावन रा बारा माए चर्चा करी जी। अलवर जिला रा पिनान माए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी श्री गडकरी मुलाकात कीनी। अलवर और दौसा पाछे केंद्रीय मंत्री गडकरी कोटा सारू रवाना भया। मारो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कने बन रही दरा सुरंग रोई जायजो लेवन रो कार्यक्रम है। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही वहां सागे रहवेला। थोड़ी देर पहले तीन ही नेता बूंदी जिला रा लबान माए राखी जिया कार्यक्रम माए शिरकत कीनी।

0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा जिला रा खातोली रे कृषि उपज मंडी माए राखी जा कार्यक्रम माए करीब 71 करोड़ रुपया रा खर्च वाला विकास रा कामा री नींव रखी और पूरा भया काम जनता ने सौंपिया। आमाय सड़क बनावण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और पीवण रा पानी रा सुविधाओ जुड़िया काम शामिल है। ई मौके श्री बिरला कहो के आ कामाओ न्यारा न्यारा गांवा ने जोड़बा वाली नई सड़क बनावण और सड़क और पुलिया री मरम्मत और हल्का रा जुड़ाव ने तेजी मिलेला।
1: इस खातोली के जो सारा इलाका है, न रोड की समस्या रहेगी, न पीने की पानी की समस्या रहेगी, न बिजली की समस्या रहेगी। यहाँ की रोड सबसे हालत खराब हुआ करती थी, जो खराब है बरसात के बाद उसको युद्ध स्तर पर काम चलाकर उसकी रोड कनेक्टिविटी, पुलिया, पीने का पानी, बिजली, ये सारी सुविधाओं का जो बरसों से अभाव था वो अभाव भी पूरा करेंगे।
0: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज मारा रहवास माथे ऊर्जा विभाग रा एहलकार सागे मीटिंग कर कामकाज रो जायजो लीनो। मीटिंग माए बिजली री पूर्ति लगातार बनाई राखण रे बारा माए चर्चा करी ची। ईसा गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और पीएम कुसुम योजना रा तहत काम माए तेजी लावण रा हुक्म दिया चिया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम आज डीग बाईपास बनावण रा काम री नींव रखी। करीब 9.5 किलोमीटर लंबी आ सड़क बनावण पर लगभग 60 करोड़ रुपया खर्च करया चावेला। ओ बाईपास बन जावण ई हल्का माए आवण जावण री व्यवस्था और चोखी बनेला। ए मौके श्री बेढम कहो के ओ बाईपास बन जावण तरक्की रा नुआ गेला खुलेला।
2: यहाँ वर्षों पुरानी मांग थी कि नगर में जाम की समस्या से निजात मिले और बाईपास का निर्माण हो। 61 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये बाईपास, जिसका मिट्टी का काम पूरा हो गया है, इसका हमने शिलान्यास किया है। इसके अलावा करीब 2000 करोड़ के काम हमारी विधानसभा में चल रहे हैं, प्रगतिरत हैं, और भविष्य में भी जो जो आवश्यकताएं हैं हम जनता की अपेक्षा पर खड़े उतर के उनके विकास की योजनाओं को धरातल पर लाने का काम करेंगे।
0: राज्य सरकार ई चौमासा माए 10 करोड़ बत्ता पौधा रोपण तय किनो है। ई सारू पौधा लगावण रो काम मिशन मोड माथा चलायो जा रियो है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर माए सचिवारी समिति सागे मीटिंग माए आ जानकारी दीनी। वे नेरी नेरी योजना मा हरियाणो राजस्थान अभियान और शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरां रा काम रो जायजो लीनो और जरूरी हुक्म दीना। मीटिंग माए वन विभाग रा अहलकार बतायो के जयपुर, बालोतरा, बाड़मेर, झालावाड़ और कोटा जिला पौधा रोपण रा काम माए अगाड़ी है। मुख्य सचिव बतायो के शहरी सेवा शिविरां माए हाल ताई 28,000 बत्ता पट्टा दे दिया चिया है, जबकि ग्रामीण सेवा शिविरां रे जरिए 38,00,000 बत्ता लोगां ने फायदो दियो चियो है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अलनीनो रा असर री शंका न ध्यान राखता थका आज नई दिल्ली माए आला दर्जा रा अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। वे कहो के केंद्र सरकार पूरी तैयारी और साफ रणनीति सागे अलनीनो री चुनौतियां रो सामो करण सारू सक्रिय और सावचेत है। कृषि मंत्री कहो के देश माए जेठ महीना माए भी कम बिरखा पाछे आषाढ़ माए हालात सुधरिया है। देश माए अब कम बिरखा वाला जिला री तादाद 262 घटर 178 रह गई है। मीटिंग पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका केंद्रीय कृषि मंत्री कहो के अल नीनो री शंका न ध्यान राखता थका पूरी निगरानी राखी जा रही है। ई बीचे चौमासा री बिरखा मोड़ी सरू वेवण रे कारण सोयाबीन और कपास री साख माथे असर पड़ियो है। किसाना ने मक्का, बाजरा, मूंग और बेगी पाकण वाली और कम पानी री जरूरत वाली साखा री बुआई री राय दी जी है। कृषि मंत्री बतायो के जून महीना माए चलाई चिया खेत बचाओ अभियान रा तहत करीब 1,25,000 कार्यक्रम राखी चिया और 80,00,000 बत्ता किसाना ताई पहुंच बनाई ची। वे बतायो के बीज री उपलब्धता तय करण सारू करीब 2.25 लाख क्विंटल रो राष्ट्रीय बीज भंडार बनाई चियो है।
3: हमने 2-3 तैयारियों और की, एक तो बीज की कोई कमी ना रहे और इसलिए हमने लगभग 2.25 लाख क्विंटल राष्ट्रीय बीज का एक

0: जब भंडार रखा है कि कहीं अगर एक बोनी खराब हो गई, बीच में कहीं गैप ज्यादा हो गया बरसात में, तो बीज की कमी हमारे पास ना रहे, उसकी व्यवस्था भी की है। ऐसे समय किसान को पैसे की भी जरूरत होती है, इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड जिन किसानों के पास नहीं थे वो बनाने का भी अभियान चलाया है। 30 जून तक जो 1,14,613 आवेदन प्राप्त हुए थे उनमें से 94,417 स्वीकृत करके उनके किसान क्रेडिट कार्ड बना दिए गए हैं। फसल बीमा योजना में भी किसान ज्यादा सम्मिलित हो उसके लिए भी हम अभियान चला रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया दौरा पछे आज ऑस्ट्रेलिया सारू रवाना भे गया। प्रधानमंत्री मोदी रो मेलबर्न माए ऑस्ट्रेलिया रा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज सागे मुलाकात रो कार्यक्रम है। इस दौरान दोनों देशों बीच कारोबार, निवेश, रक्षा, भनाई लिखाई और साफ ऊर्जा समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे चर्चा करी जावेला। विदेश मंत्रालय रा प्रवक्ता रणधीर जायसवाल सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए बतायो कि श्री मोदी रा इंडोनेशिया दौरा हुई दोनों देशों बीच सहयोग रा खास नतीजा सामी आया है। राष्ट्रीय महिला आयोग श्री गंगानगर माए 13 साल री टावरी सागे यौन दुराचार और मानव तस्करी रा मामला माए श्री गंगानगर रा जिला मजिस्ट्रेट और SP ने 15 दिन माए विगतवार कार्रवाई रिपोर्ट पेश करन रा हुक्म दीना है। आयोग विशेष जांच दल SIT री ओर करीची जांच रोई संज्ञान लीनो है जिन्हें तेत हाल तई 18 आरोपिता ने गिरफ्तार करीचिया है। बाकी आरोपिता री बेगी गिरफ्तारी रा हुक्म ही दिया चिया है। इस आगे सगला डिजिटल प्लेटफॉर्म ई मामला माए पीड़िताओं जुड़िया वीडियो और सामग्री तुरंत हटावन सारू कही चियो है। देश माए हाल तई 23 करोड़ 32 लोग नशा मुक्त भारत अभियान जुड़ गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय रे मुजब आम आए 7,81,00,000 उम्बत्ता नौजवान, करीब 5.25 करोड़ महिलावां और 17,00,000 उम्बत्ता स्कूल कॉलेज शामिल है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार कहो कि ई अभियान रा तहत नारकोटिक्स ब्यूरो, राज्य और जिला प्रशासन, पुलिस, गैर सरकारी संगठन और अस्पताल मिलर देश माए नशारी लत न जड़ू खत्म करण सारू लगातार कोशिश कर रहा है। टीबी मुक्त भारत अभियान रा तहत प्रदेश माए स्वास्थ्य विभाग री ओर जांच और जागरूकता अभियान चलायो जा रियो है। सलूम्बर जिला माए जयसमंद हल्का रा देवपुरा माए आज लगाई गया ग्रामीण सेवा शिविर माए लोगों री पोर्टेबल डिजिटल एक्सरे मशीन स्वास्थ्य जांच करी जी और टीबी री शंका वाला लोगों ने इलाज री राय दीरी जी। अरब मौसम मौसम विभाग आज जैसलमेर और बाड़मेर अलावा आखा राज्य माए बिरखा विवण सारू चेतायो है। बारा, झालावाड़ और कोटा माए तेज बरसात रो ऑरेंज, जबकि 33 जिला माए येलो अलर्ट जारी करी चियो है। काल सवाई माधोपुर, कोटा और बारा जिला माए चोखे बिरखा रा आसार है। 10 जुलाई पछे बिरखा माए थोड़ी कमी री संभावना है। इन बीच आज अलवर, कोटा और बारा माए में बरसियो। भीलवाड़ा माए दोपहर पछे बादलों री गाज सागे थोड़ी देर ताई तेज बारिश हुई। धौलपुर माए सवारे हुई छांटो छिड़को भियो। दूजी कानी जैसलमेर माए उमस और जोरदार गर्मी रही। जयपुर माए विदेश मंत्रालय और राज्य सरकार री ओर 16 जुलाई ने विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस रखी जावेला। जनता ने सुरक्षित और वैध प्रवासन रा प्रति जागरूक करण और फर्जी एजेंटा और गैर कानूनी प्रवासन बचाव रा उपाया री जानकारी देवन सारू आ कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है। इनो दूजा देशा माए काम कर रहा भारत रा लोगा और मजूरा रो भलो तय करण माए मदद मिलेला। कॉन्फ्रेंस माए राज्य सरकार री प्रवासी राजस्थानिया जुड़ी न्यारी न्यारी पहला कौशल विकास और सैर सपाटा ने बधाओ देवन समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विचार करियो चावेला। आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे री गुणवत्ता और बनाई चुनाई रा कामा रो जायजो लेवन सारू दिल्ली कोटा ताई सड़क मार्ग सफर कीनो। राज्य सरकार ई चौमासा माए 10 करोड़ पौधा रोपणो तय कीनो। पौधा देवण और रोपण रो काम मिशन मोड माथे। अल नीनोरी चुनौती रो सामो करण सारू केंद्र सरकार सावचेत। बीजा री उपलब्धता तय करण बाबत 2,00,000 क्विंटल रो बीज भंडार तैयार। और राष्ट्रीय महिला आयोग श्री गंगानगर माए

0: नाबालिग टाबरी सागा यौन दुराचार रा मामला माय संज्ञान लीनो 15 दिन माय रपट मांगी। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार,
1: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

0: दिनेश भाई कहीं हम चार है मैं पानी रहा।
1: गुरुंद्र भाई देखो के मैं पानी तो राजस्थान में मैंने वेरियो है थोड़ थोड़ कटी हल्लो वेरियो है कटी थोड़ो वेरियो है रे बाजरिया भी बेई है रे मूंग भी बह रिया है रे कर रिया है कटी कटी हमारे भी यूं थोड़ो कम है तो किसान भाई ने उड़ीक है मेरी।
0: बिल्कुल देखो के चौ दिस अगर आप देखा नहीं तो आल कई अड़ी जगह है जटे बरसात री उम्मीद आस है जटे हड़बा में उग्यो उठे तो भाई लोग अड़ी के हार आप रे खेती री तैयारी कर ली कई तो बीजो कर दियो
1: आसा
0: और हमें कहीं कह गए ऊपर आले माते आस है रहा उम्मीद करा कि भाई और जुलाई रो पूरो महीनो है नी ये में बरसात होती रही।
1: सही कहे गुरुंद्र भाई और जरूरत इन बात रही है कि किसान भाई है तो आप रहे में पानी उजा तो सेगला जी का खेत है वे आप रहे बावे बढ़िया भांत भांतरी जी की फसला है दलनी फसला लेवे तिलन लेवे गवार लेवे साथे बाजरो है मूंग मोट जितना भी लेवनी चाहे वे आप रहे लेवे और मारो क्यों यू है कि हाथे एक फसल हाथे आप बड़े दूजी पंक्ति दूजी अलावंसा तो फसला बढ़िया वे।
0: देखो ए तो दिनेश भाई यू है कि पुराने जमाने हुई जका बुजुर्ग लोग हानि मैं बड़ा जानकार होता मैं तो चलो वैज्ञानिक सोच आएगी लेकिन उन टाइम खेत जका है भाप प्रकार जकी है कि कटी पाड़ है न कटी मगरो है न कटी ताल है न कटी नाडियरी जमी है कटई खेड़ो है तो अलग अलग ए शब्द है वो वेरी भौगोलिक स्थिति ने बतावे कि भाई हमें नाडी करने कोई है बढ़िया ढेर कटई है तो उठे के भाई हम के गवार बार दो पहाड़ में कहीं है कि भाई उठे ओ बार दो तो उन टाइम बे आप रे हिसाब हूँ ओठारो ही खेती होती या बल्दा गाड़ी हूँ बल्दो ही खेती होती और परिवार चाहे कितो ही लूटो तो उन 40-50 बीघा हल्लो तो बाई सको नहीं
1: सही
0: जिते जमी पाची हूब जाती तो वे चक्र बने रखता भाई हमके इमे बायदा आ बायदा तो ज्यू ज्यू फोरन अगर आप जमीन काम में लेवा फोरन अगर आप फसल काम में लेवा तो उपज जकी है वह ज्यादा हो
1: सही के सा फसल जी को उत्पादन है वो भी बेसी मात्रा में वे और साथ साथ मिट्टी जी की उरूरा क्षमता है गुरुंद्र भाई वह भी देखो भन्योड़ी रेवे मूंगारी फसल लेवे तो साथ जी की नाइट्रोजन है वायुमंडलू वह हाथे बरसात रहते जमीन में प्रवेश करे काजे तो मिट्टी जी की है उनको जी को स्वास्थ्य है बिन महीने बढ़ोतरी होवे और साथ जी को भी धान चुन किसान भाई लेवे तो उन महीने बदप होवे और साथ साथ जी वो भी धान लेवे तो धान जी की किस्म है वह उन्नत किस्म जी को बीज है वो काम में लेना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल उन्नत किस्म रो काम में लेना जरूरी है और साथ ही साथ है उचित माध्यम लेना जरूरी है।
1: हाँ अब बात आ गई
0: मैं वो है कि भाई बीज कटे खोट वाला आ गया तो 12 महीना हमें झाकना पड़े और बीजे महीने आप देखा कि कई बात बात रहा जका मार के रहा बीज वे बामे लिखियो कहीं हुए ओपत केड़ी हुए अगर आप सही तरीके हूँ कृषि अनुसंधान केंद्र हूँ या जका विपणन केंद्र है सहकारी समिति रहा उठाऊ अगर आप बीज लेवानी तो उन बीज री प्रमाणिकता है वजह की बीज री थैली बीजी है उ भी ध्यान रखो आप रे कन्ने रखो यू नहीं कि बीजो लाओ दुकान उन बीज दियो अरे भाई उरो कहीं नाम हो उरो कहीं ट्रेडमार्क हो उरो मैन्युफैक्चरर कौन हो ए चीजा हमें ध्यान रखन दी काले अगर मान लो फसल नहीं हुए तो ये कम कम क्लेम तो ले थे।
1: सही कहो सा आ चीजा बहुत जरूरी है जिका नाप तोल है जिकी अवसान जिकी अवधि है थैलिया माते लिखड़ी हुए पैकेट माते लिखड़ी हुए ध्यान रखनो चीज है और साथ साथ जिकी दर है रेट जिकी है उनको भी ध्यान रखना जरूरी है और गुरुंद्र भाई यूं है किसान भाई ए चीजा ले आवे जिको बिल वगैरह है वो भी आप
0: पक्को बिल कोई कह के नहीं
1: जीएसटी कटियो
0: हाँ के भाई बिल को नहीं लू 2 रुपया सस्तो दे तो अरे भला मीने जको बिल नहीं दे 2 रुपया हस्तो दे उगड़ी कहीं गारंटी हर दुकानदार कहवे के नहीं नहीं मैं बैठो हूँ तो वो तो बैठो ही रही अगले साल दूजो बहानो बना दे इन वास्ते भाई लोग जो कि जो भी फसल बाओ चाहे ग्वार है मोट है मूंग है बाजरी है तो ये प्रमाणिक जको बीज है जट कटे बीज बिके नहीं तो वे प्रमाणिकता वे साथ उपलब्ध हुए और अगर आप कटे विपणन केंद्र है कृषि केंद्र है या कृषि विश्वविद्यालय है या कृषि जट कटे जो कृषि रो सरकारी बैंक में उठ जान अगर आप ले तो बचाओ ये महीने भाई उम्मीद कर सका कि भाई बीज जगह

0: सही कहे सर, प्रमाणिक वह और साथ है जी की उपज है वह भी अच्छी होवे, और मतलब ठोक बजान वो बीज भी क्या करे, और साथ है काजरी का निशुम बीज जी को है वो बेची जा करे गुजरी भाई। और हाँ देवे साहब, भांत
1: तो
0: मात्रा कृषि
1: हाँ
0: अनुसंधान केंद्र है वे भी किसान वास्ते इन भगत जी का बीज राजी का पैकेट है जो भी
1: भाई,
0: थैलियां देवे।
1: मारो तो एडो मानना है कि जकी आप रो खुदरो बीजो वे नहीं
0: हाँ
1: उवेरी तो भाई ओडिच को दी।
0: सही है साहब,
1: और गांव में ही पहला तो देखो बीजो राख था, हमें ओड़े ओड़े जदू थैलियां बापरी है तो जो को गांव रो प्रॉपर बीज है, गांव रो जो को प्रॉपर देसी बीजो है वो ओड़े ओड़े लुप्त हो गयो। अगर आप बाजरी की बात करा
0: हाँ
1: तो दोरा धरती में चाडी क्षेत्र महीने उठेरी जो की लोकल बाजरी वो पीले रंग रही होती
0: हाँ पीड़ी
1: ले।
0: हुड़क
1: हाँ तो हमें ओड़े ओड़े आंध्रा रज का बीज आया,
0: हाँ
1: आंध्रा री कोऑपरेटिव में उमे हड़की कड़ा से,
0: हाँ
1: तो देखो के आज 20 साल पहला सुनहरी रोटी बनती न हमें बा काली बाजरी रोटी बने, तो ओले ओले बीज ही संक्रमित तो जावे क्योंकि आप आपने बीज ने तो अवेरियो को नहीं
0: हाँ
1: दूजो बीज और ला ला उनी जमीन मत बावता रहे ना, आपने जमीन बीमारी हवा होगी बीजो ही आपनो बदलीज गयो।
0: सही कह गोविंद भाई, उनके साथ साथ जी का डांकला जी का डंठल जी का निकले हमें एक एक निकले। पहला मारे गिरनेड़ा है एक एक बूटा रमाइने 22 22 25 25 जी का डोका है बाजरी बूटे रमाइनू निकलता करता है।
1: बिल्कुल देखो बा एक निकले हुए एक ही हुई
0: हाँ
1: और 25 वे हुए
0: 25
1: 25
0: हिट्टा लागता भाई,
1: 25
0: लंबा लंबा
1: पू
0: हाथ
1: वहां
0: हाथ। हाँ
1: पू की और धानी अलग हुई।
0: हाँ
1: तो भाई लोग जो भी परंपरागत क्षेत्र महीने कठे बे पुराना बीज है उरी आली अवेयर करो
0: हाँ
1: और ध्यान रखो। देखो ये बीज आली जकी ए बड़ी बड़ी फैक्ट्रिया या कंपनियां बे आ करे कहीं है आ थे करो जो कोई तो करे।
0: हाँ चौका चौका छांटे सर
1: हाँ तो थे ही आप रे टेम बढ़िया लोकल जो को स्थानीय बीज है उन्हें टाल चौको चौको टाल रख दो
0: हाँ
1: और हमें आप भी है कोनी कि भाई बीज खराब हो जा कई चीजा आएगी कई तरह रा जका है तरीका हो गया जके वहां पर अपनो बीज जो को है वो संरक्षित रख सका।
0: सहजन रख सका
1: हाँ तो सही जनरा कहा तो अगले बार वो काम आई। तो कुल मिला रहे के अगर जमीन माटी पानी और बीजेरो मेल है जना तो जकी खेती है वो भाई बहुत बढ़िया वेर मेल बिगड़ गियो कटी बीजो खराब हो गियो कटी में पानी मोड़ो बेगो हो गियो और कटी जमीन है उरी ताकत मान लो कम ज्यादा है तो ये सीधो असर खेती माते पड़े।
0: सही कह गुरुंद्र भाई जी की जैविक खेती है वाह वेरी करियर खास तौर से आप जी बात की हो तो बाता बाता में मन याद आएगा कई एडी माठा वह माठा माते बढ़िया जी की फसल है वह बिनो बीज बढ़िया पाके और साथ है खेलडीरो जी को वृक्ष है वृक्ष रे आड़ पाड़े जी की फसल वह तो उन जी को बीज बहुत ही उन्नत

0: किस्म रो बीज वे और क्वालिटी रो बीज वे गुरुंद्र भाई और साथे जी का गुण वे विने बीज रे मैंने वे विद्यमान रहे
1: भाई। पहला जो पू के बेड़ा करता नहीं वे में ध्यान रखता के भाई कियो हिटो मोटो है उन्हें अलग कर रख
0: उगन मनावता हाँ,
1: तो उन्हें अलग रखता वे दाने ने अलग रखता भाई हिटेर में दानो तो साफ दिख जाता तो उन दाने देखन के नहीं भाई ये बीज रूप में लिया। तो कुल मिलार आज रे टाइम में किसान अगर पहला तो पूरो रो पूरो बरसात में निर्भर हो। हमें कई गाँव में तो ट्यूबवेल हो गया जो बरसात थोड़ी मोड़ी बेगी वे तो ट्यूबवेल बाणत कर दे।

0: हाँ
1: सही कह, पाणत कर दे और फसल जी की भूजा कर्जा काजा। और गुरुंद्र भाई थोड़ी मेहनत करनी पड़ेला किसान भाई ने, जी आप बात बताई हो कि ए जी का बीज है वे अपने छाटन रखना चाहिए, जो को बाजार में जी की कीमत लागे तो वह कीमत भी आप बचा सका और अपन आखिर हम ही बीज आप अगर तैयार करा तो उन जी की उगनी और उन बीज जी की क्वालिटी है वह 100% आई
2: भाई। घरे खेतरी उगड़ी बाजरी और उगेरा लूठा पूखिया उन लूठा पूखिया बढ़िया दाना तो उरी गारंटी तो खुद ही ले पच किसान उन बढ़िया कहीं ओ बीजो हो सके। और देखो दिनेश भाई हमें टाइम बहुत तेजी रे साथ बदल गयो, खाली अगर आप बरसात री खेती माते निर्भर हाँ तो घर ही नहीं बेवे।
1: हाँ।
2: बारह महीने री बाजरी होवे कोनी, और बारह महीने री बाजरी हो जाए तो और गाय रे चारो हो जाए तो इनु पूरो घर परिवार चले कोनी क्योंकि खर्चा हो गया घना। और हर जो किसान है वो आ चाहे कि आर्थिक व्यवस्था मजबूत और सुदृढ़।

0: बिल्कुल, देखो अगर पशुधन है तो वो अगर आप खेत में चरे तो भाई पोटा हुए, और पोटा हाथ रेत जिले तो उन खेत री जकी मिट्टी है उरी उर्वरकता है वह बढ़ जावे।
1: हाँ
0: और मैं भाई टाइम एडो आ गयो दिनेश के हुनो खेत में तो लोग छाना ही चुगन ले जा,
1: ले जैसा
0: तो खेतरी रुखाड़ी खेत रो ध्यान रखना भी जरूरी है। हमें ज्यू ज्यू खेती री तरीका न बदलाव देखियो त्यू त्यू कई नई चीजें आएगी। पश्चिमी राजस्थान पहला रोजड़ा दिखता ही कोनी, हमें रोजड़ा रा टोला है,
1: हाँ
0: और उहे रहते ए सुअर गिंडूरिया ए बड़े आ गया।

0: तो थोड़ी बहुत अगर आप ध्यान नहीं रखा तो पकी पकाई फसल है जो कि एक रात में जका जिनावर है वो ने खराब कर दे।
1: सही कह सा, देखो रुकाली राखनी बहुत जरूरी है। जदी जो जिको धान है चुन है, चार महीना रे महीने किसान भाई रात दिन मेहनत करे है, दिन भर देखो खेतरा जी का काम काज करे और रात रा भर जिका है रुकाली करनी पड़ जाए, जी आप बात बताया गया जी का जीव जिनावर परेशान करे काज है, तो इनारे भी जापते वास्ते देखो सामूहिक रूप से जिको प्रबंधन है वो किसान भाई ने राखनो पड़ेला। एक एडवाइज मतलब निंगे दास थी राखे हारी बारी, एक दिन थे जागन ध्यान राख लो, दूसरे दिन मैं थानो पड़ोसी हूँ तो मैं ध्यान राख लू कर लू, तो इन तरह मिलजुल गुरविंदर भाई जे खेती बाड़ी का काम काज वे तो फसल जिको उत्पादन है वो भी बेसी वे।

0: बिल्कुल देखो कि खेती है जो कि पूरे गांव वाला रही है,
1: हाँ
0: और जो खेती में जब कानून कायदा नियम है वह पूरे गांव में लागू हुए कि जिम गाया जल जा
1: हाँ
0: तो पचा आप गाय खुली नहीं छोड़ सकते, और कहवे नहीं भाई गाय घास इतोग्यो के गाय दौड़ती दापन डूगी। तो गांव रा खुद रा कायदा है, गांव जड़ जे गांव में जड़ी समस्या है तो भाई मिलजुल उन समस्या रो समाधान करी जना इस पार पड़ी न हमें देखो अतई उगी गणी।
1: आशा
0: और कार्यक्रम रो भगत हो रही है पूरो तो चौपाल कार्यक्रम संपन्न करने सारू आपरे साथी गुरविंदर विश्नोई
1: और दिनेश राणे जाने शिव दिराओ राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं सीमा डेरी गूंज।

0: ऐडा गाजियाबाद जिया लेना ये तो कूड़ा बात कर ओढ़क लिया नड़िया तो ठा पड़ जा मैंने कूड़ा
1: लड़िया भी निशाब हो तो मन लगे ओढ़क लिया
0: ओ ठीक ठीक ठीक ठीक ओढ़ गए भाई
1: राम राम सा
0: हाँ राम राम राम राम कभी पगे तुझे लाग बो
1: करो हाँ सा प्रणाम करो सा
0: खुश रहो मौज करो
1: इतना उकली उड़ा क्यों रहो
0: उकलीड़ा वेड़ा है बाजा मारे कान में बाजे जब मन खरो जर लागे मारे वेड़ो नहीं होनो
1: यूं
0: वेड़ा बजाव तो आओ ही क्यों हटे
1: मैं ओचियो कहीं था आज थोड़ो नयो बजाए
0: वेड़ा है बजे कोई देखे भाई देखे कह कोई एड़ो गीत रो वे अपने कह कह दोरा धरती रो क्या उसमें कई गीत रहा है क्या कौ क्या भाई के गाजियो गाजियो जेठ असाढ़ है क्या नहीं बरस बरस मारा इंद्र राजा है
1: अच्छा
0: कोई मुरड़ा बोले कोई ऐडा गीत वैद कोई है जिके जी हो रही है ऐ लापरा नटे है जिके क्या नहीं क्या कर टा कठेरा बजा टे के हन कम थोड़ा
1: कदे ही कदे ऐडा हुन्ना चाहिए
0: ऐडा हुने मैं तो आजकल देखियो मिन करो तो कई है बस बाबू कहता क्या एक टाइम ऐडो आवेला मिन गल्लो है जो फिर
1: यूं
0: कहते हूँ बाप विचार कर तो इतना बड़ो या मैं तो भाई बाबू कहता बात की करूँ तो आ बात हकीकत में आज उड़ी क्या मिन्न के है जी को कोई काना रखने खुनखुनियों लगे रो बहुत है इन मार्ट उन मार तक जा है न कोई अटी में हड़का मत जा है न कोई काना में गाली उड़ा बेहन पद कटे लारू कोई गाड़ी मोटर गाड़ा आवे बैठक
1: बच्चे तो ही नहीं रहे पछे
0: अरे
1: सही बात
0: अरे भाई देखे कोई चीज जो कहूँ कह भाई देखो बापरो नहीं
1: अति खराब
0: तो उन्हें पते कही साबू उन्होंने नुकसान देख ना लो
1: सही बात
0: हमें देखे कि बदलिया आया है इनकी थोड़ा घना बढ़िया ही है और नीलम नीलम ही नाम
1: है हाँ हाँ सा
0: हाँ नीलम है
1: हाँ सा
0: तो भाई देखे क्या मैं बढ़िया पते हैंगी है जो कह नहीं राजीव बाजी और कुदरत रो निजाम है क्या कुदरत है जो को किन्हीं हाथ भेदभाव नहीं
1: आतो आते
0: क्या तावड़ो पड़े धंगा वाते पड़े और कह नहीं कि भाई ही पड़े धंगा वाते पड़े
1: सही है
0: और मैं आवे तो हंगर वाते आवे पर क्या नहीं के कीड़ी ले नाती तक है मैं कई राजीव है कई बेराजीव है
1: सही बात है
0: और बड़ा है भाई देखे हंगो हली है जिसको कह नहीं राजीव है धरती धरती माता है जिसको कह नहीं बा एकदम हंगो हली कह नहीं खुशी मनावे क्या भाई देखे क्या पर बखान घड़े ही हो या
1: हाँ
0: धरती रा कह नहीं के भाई देखो क्या गऊ नाला है लिख नाला है दूजा है क्या भाई है जिसको कह नहीं के बखान धरती रा घना
1: करे करे
0: और चौमासे बाता मोटी वे देखो है चीज निपजी खाने बात है जट जट जड़ो मिनक है जिको रे तो उन्हें आबो हवाल उन्हें खोड़ रहे हिसाब मुंबे आप रे कह नहीं के भाई की
1: बावे
0: आप फसल बावे
1: बावे उपजे सही बात
0: हाँ कटी मक्की बाई तो कटी जवार बाई तो कटी बाजरी बाई कटी है जो कह नहीं सवला बाई तो कटी है जो मूंगफलियां बाई कटी बाजरी बाई कटी है जो मूंग मोट गवार तिल है बाई हमें है चीजा है भाई देखे की एक थोड़ो रोती आड़ो में हो जा रही
1: हाँ सर
0: तो अपन खड़े ही करा बीच तो आजकल देखे दो महीना हवा दो महीना

0: कोई है
1: हालकटे उम्र है।
0: अरे मार ते के भाई क्या मोटियाल क्या नहीं मोटियाल पण मारा आवे कोनी हूं बोली होनो तोल दू तो ठीक है नी। ऐसे कुदरत रा खेल है। हमें आप फरमाओ कुन।

0: ઠંડી
1: હવા અમે ઉમેદવાર તો હોય અમે

0: ये वहां कह नहीं के भाई कह को तो बड़ो कह दो रोड़ो गीत हुनियो पर बाकी कौन भाई कह नहीं के जड़ा जड़ा बे आपरा कह समाज में मिन को या वे मिन का हिसाब हैं ये बात हुई
1: सही है
0: तो सो की बात है भाई। और मैं देखे के बातरिया तो कह नहीं खासी है हमें रातड़ी मोटी हो जाई है बात है कल दिनों के थोड़ा खेत में आला देखा थोड़ा घो खाद भी केरनो है पर तबियत का जुड़ी है ना मैं खड़े ही थोड़ा गड़बाव में हो जाए इस वजह आप कहीं है ढीले डूले लाग जाओ हमें बढ़िया थे है जी को कह चौको कह नहीं जिमनी जो तैयार करो और उन्हों पहला मनी कर जिसी
1: होना फर्जी सुना होना पड़ी
2: थारी मुरली ने थारी बासुरी ने थारी मुरली ने।

अभी आप सुन रहे थे सीमा डेरी गूंज। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं अलबेला फिल्म से कुमार शानू और अलका याग्निक के युगल स्वरों में। गीत के बोल हैं समीर के, धुन बनाई है जतिन ललित ने।

उदित नारायण और अलका याग्निक के आवाज़ में अभी आपने तेरे नाम फिल्म से ये गीत सुना। गीत के बोल थे समीर के, संगीत था हिमेश रेशमिया का। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से। आइए अब सुनते हैं उदित नारायण और विभा शर्मा की आवाज़ में हद कर दी आपने इस फिल्म से एक और प्यारा सा गीत। गीत के बोल है आनंद बख्शी के, संगीत आनंद राज आनंद का।

अलका याग्निक और कुमार शानू के युगल स्वर में अभी आपने रंग फिल्म से ये गीत सुना। गीत के बोल थे समीर के, संगीत था नदीम श्रवण का। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। मर्द फिल्म से शब्बीर कुमार, एस जानकी, केतन देसाई, अमिताभ बच्चन, अनु मलिक और साथियों की आवाज़ में। गीत के बोल हैं रविंद्र किशन के, संगीत है अनु मलिक का।

0: गॉड को सलामी देना जरूर फिर जाना उसे मिलने।
1: गोगा, ये फादर का बच्चा कौन है?
2: फादर के बच्चा नहीं सन, फादर को बाप बोलते हैं और तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है।

Kora! सुना क्या लड़की बोला? हाँ, बात में बहुत दम है। छाती ठोक ठोक के बोला।

गाए जा।

सोनू निगम और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज़ में आइए सुनते हैं बादल फिल्म से ये गीत। अनु मलिक का है संगीत, गीत के बोल हैं समीर के।

अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज़ में आइए एक और प्यारा संगीत सुनते हैं, जान तेरे नाम फिल्म से। नदीम श्रवण का है संगीत, गीत के बोल हैं रानी मलिक के।

कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं, कयामत से कयामत तक इस फिल्म से अलका याग्निक और उदित नारायण के स्वर में। गीत के बोल हैं आनंद मिलन के, संगीत है मजरूह सुल्तानपुरी का।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पहले समाचार संध्या और रात 9 बजे News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इसे हम रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई

0: में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्ट्यूक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओ'नील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना संचिता ओब्रोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने

0: उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
1: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
2: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली एनसीआर में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऋषु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
3: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी के किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की

0: राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
1: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95.56 रुपए पर बंद हुआ।
0: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्सुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस और यूक्रेन की मार्ता कोत्सुक ने जस्मीन पाउलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
3: गुड इवनिंग। दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Melbourne to take part in the third India-Australia annual summit. India and Russia reaffirm commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora. DRDO conducts successful flight test of Pinaka long-range guided rocket at Chandipur in Odisha. Monsoon recovery brings relief. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan expresses confidence that rainfall to gain further momentum this month.

0: पहले जो श्यामल इतना चहक रहा था, उसकी आवाज अचानक गुम हो गई। यह तूफान से पहले वाली शांति है। श्यामल की नजर कितनी देर में उठी और मां की नजर से टकरा गई। मां उठकर चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गई। शालमली उठी और डरते डरते उसने श्यामल के कंधे पर हाथ रख दिया। कोई और दिन होता तो श्यामल मां से नजरें चुराकर उसे अपनी ओर खींच लेता, पर आज वह वैसा ही जड़वत बैठा रहा। वह कुछ देर वैसे ही चुपचाप खड़ी रही, फिर उसने ही हिम्मत बटोर कर पूछा, तुम्हें क्या हो गया है श्यामल? आखिर मैंने कौन सा अपराध कर दिया? शालमली का गला भर आया, आवाज रुंध रही थी। श्यामल ने जैसे ही उसके हाथ पर हाथ रखा तो आंसू गालों तक लुढ़क आए। श्यामल की आंख भी भर आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जो कहना चाह रहा था उसमें उसकी जुबान साथ नहीं दे रही थी। वैसे भी जो पीड़ा उसने 20 वर्ष तक भोगी उसे शब्दों में बयां करना इतना आसान नहीं था। उसकी आंखों के आगे बचपन और उसकी घटनाएं एक एक कर गुजर रही थीं। घटनाक्रम को कहां से जोड़े, कैसे शुरू करे अपनी बात। बाल मन पर अंकित घटनाएं समय असमय अपने अस्तित्व का बोध कराती रही हैं, पर उसकी तपन शालमली को महसूस नहीं होने दी उसने कभी। पर आज शालमली के प्रस्ताव ने अतीत पर पड़ी गर्द को बेरहमी से उड़ा दिया। उसकी आंखों के आगे था एकदम नंगा निष्ठुर अतीत। उसने चारों ओर दृष्टि डाली और आश्वस्त हो गया कि मां वहां नहीं है। तब शंकित किंतु क्रोधित मन से इतना ही पूछा, शालू जो बात तुमने कही थी वो तुम्हारा विचार है या मां का? हम दोनों का समझ लो। नहीं शालू, समझ लो कहने से मैं नहीं समझ सकता। मैं तुम्हारा पति, तुम्हारा मित्र, गत 5 वर्षों से तुम्हें जितना समझ पाया वह सब गलत हो जाएगा। श्यामल को क्या पता कि माँ दरवाजे की आड़ में खड़ी उसकी सब बात सुन रही है। तुमने कहा कि माँ मुन्ना को ले जाना चाहती है। क्यों क्यों शालू? मुन्ना हमारा है, हमारा पहला बच्चा। यह वह बच्चा है जिसने हमें शालमली और श्यामल से अलग माता पिता का दर्जा दिया, धरती और गगन की ऊंचाइयां दी। यह मेरा तुम्हारा प्रतिरूप है और तुमने उसके लिए इतने आराम से कह दिया। सुनो तो सही, मुझे इस संबंध में तुम्हारी एक भी बात, एक भी दलील नहीं सुननी है। तुम यही कहोगी ना कि तुम पार्लर के साथ साथ मुन्ना की उचित देखभाल नहीं कर सकोगी, तो बंद कर दो पार्लर, सीमित कर लो अपनी आवश्यकताएं। मत बनो धन कमाने की अंतहीन दौड़ की प्रतिभागी, मत बनो शालू। कुछ पल खामोश हो गया श्यामल, फिर बोला, यही तो कुछ साल हैं, इन सालों में तुम माँ बनकर जी लो शालू। माँ ममता मई माँ, त्याग मई माँ, जन्मदात्री नहीं पालनहारी माँ बनकर देखो, तुम्हें सुकून मिलेगा। शालू हमारा मुन्ना कहीं नहीं जाएगा, हमारे पास ही रहेगा। इसके लिए पार्लर बंद करना पड़े तो कर दो। श्यामल अपना निर्णय सुनाकर उठ चुका था, वॉश बेसिन पर हाथ धो रहा था। शालमली परेशान सी उसे देख रही, सोच रही थी माँ क्या कहेंगी, कैसे कहेंगी। पार्लर बंद करने का मतलब कई महत्वपूर्ण परिवारों से संबंधों का टूटना और फिर मेरा अपना अस्तित्व, मेरी अपनी पहचान। क्या मैं भी श्रीमती श्यामल बनकर रह जाऊंगी? सभी कुछ समाप्त हो जाएगा, सारी शिक्षा, सारी ट्रेनिंग सब व्यर्थ। रोटी तो हर औरत पका लेती है, बच्चे भी सब पलते ही हैं। फिर हमारा मुन्ना कोई अनोखा नहीं है, मुन्ना कहीं और नहीं, दादी के पास ही तो जा रहा है। श्यामल की आवाज उसे वर्तमान में खींच लाई। तुम्हें मेरी बात ठीक नहीं लग रही है, मेरे निर्णय से परेशान हूं, शायद चकित भी, पर तुम्हें पता है शालमली, मैं भी अपने माता पिता से अलग ननिहाल में पला हूं। वह घर भी अपना था, परंतु उस अपने घर में पराये होने की पीड़ा मैंने भोगी है, उसका दर्द मैंने भोगा है। मेरे बाल मन पर अंकित वे दृश्य मृत्यु पर्यंत नहीं मिट सकते। ममता का अभाव मैंने महसूस किया है, माँ दादी और नानी का अंतर जितनी गहरी से मैंने महसूस किया है, मुझे लगता है माँ या तुम नहीं समझ सकते। समय से पहले मुझसे मेरा बचपन छीन लिया गया, प्यार की प्यास में भटका हूँ मैं शालू, इसलिए इसकी पुनरावृत्ति मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं उसके लिए कोई भी कीमत देने को तैयार। बोलते बोलते श्यामल कुर्सी से जमीन पर आ बैठा।
1: शालमली।

के घुटनों पर सर रख कर चुप हो गया। शालमली उसके बालों को सहलाने लगी। चुप्पी पसर गई थी कमरे में। शालमली चाहती थी बोलना, पर श्यामल के दर्द को बाहर आ जाने देना चाहती थी। श्यामल के आंसू बह रहे थे। धीरे धीरे कहने लगा, हम मुन्ना को प्यार देंगे, भरपूर प्यार। हम मुन्ना को माँ को नहीं देंगे, अभी ही तो प्यार चाहिए उसे। हम अभी उसे जितना प्यार देंगे, बड़ा होकर समाज को वह 10 गुना ज्यादा प्यार देगा। उसे अंगुली पकड़कर चलना सिखाएंगे। उसकी निश्चल हंसी में दुनिया की सारी खुशियां हमारे आंगन में सिमट जाएंगी। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे पांव में बेड़ियां डाल रहा हूं। तुम नारी मुक्ति की बात करती हो, मैं भी नारी मुक्ति का पक्षधर हूं। पर मुक्ति का मतलब परिवार से मुक्ति नहीं है, बच्चों से मुक्ति नहीं है। कुछ ही साल की बात है, विश्वसनीय आया मिल जाए तो पार्लर बंद करने की भी जरूरत नहीं होगी। आया तुम्हारे साथ मुन्ने को पार्लर ले जाएगी और सुबह शाम तो मैं हूँ ही। देखो शालू, कहते हैं वक्त बड़े से बड़े घाव भर देता है, पर कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त कभी नहीं भर पाता। ऐसे ही घाव मेरे अंदर हैं, जो सदैव रिश्ते हैं, उनमें असीम पीड़ा होती है। नानी ममता की साकार मूर्ति थी, मुझे हमेशा अपने आंचल में छिपा कर रखती। डरती थी कहीं मुझे धूप न लग जाए, कहीं हवा न लग जाए। उनके इसी प्यार के कारण मैं सबसे अलग थलग पड़ गया। एक बार की घटना मैं चाहते हुए भी नहीं भूल पाता हूँ। मैंने मोनू को गंदी सी गाली दी थी। मामा के कान में जैसे पिघला सीसा पड़ा हो, बिफरते हुए मुझ पर हाथ उठाया था कि नानी चिल्ला पड़ी, अरे अरे क्या कर रहा है, पराई अमानत है, ये जुल्म न कर। उठा हुआ हाथ रोकने में मामा को कितनी पीड़ा हुई थी यह मैं जानता हूं। अधिकार का रिश्ता टूट गया। उनकी आंखों से कुछ दिन क्रोध बरसता रहा, फिर उसका स्थान धीरे धीरे नफरत ने ले लिया। हम दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गईं। मोनू का स्कूल बदल दिया गया। मेरी और मोनू की बातचीत बंद हो गई। ऐसे ही तनाव और नफरत भरे माहौल में नानी एक रात सोई तो उठी नहीं। मैं उन्हें रो रो कर उठाता रहा। मामा आए, स्तब्ध रह गए। पड़ोस वाले मामा के साथ मिलकर नानी को जमीन पर लेटा दिया। उनका मुंह ढक प्यार का एकमात्र वह वृक्ष अग्नि को समर्पित हो गया। इतने विशाल सागर में मैं बिन चप्पू की नाव की तरह डोल रहा था। मम्मी पापा आए, मम्मी बहुत रोन। उनको रोता देखकर मैं भी कहीं कोने में छुप कर रो लेती। इस घटना के बाद मुझे विश्वास हो गया कि मम्मी पापा मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। पापा मुझे अपने से चिपकाए रहते, मैं उनसे बात करते नहीं थकता और वह और फिर करके आगे पूछते जाते। पापा ने मुझे बहुत प्यार किया, दिन रात हर पल हम दोनों साथ रहे। पापा बार बार कहते, अब तुम हमारे साथ चलोगे, मेरा कौन सा कमरा होगा, मेरे स्कूल का क्या नाम है, आदि आदि। सुबह उठने पर पता चला मम्मी पापा शहर जा रहे हैं। मैं दौड़ा दौड़ा पापा को ढूंढता फिर रहा था। अंत में छत पर मिले, गुम सुम चुपचाप मुझे देखते रहे। उनकी आंखें भर आई, मुझे कसकर गले लगा लिया और इतना ही कहा, अपने पापा को माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। मामा जी की पुकार सुनकर हम दोनों नीचे उतर आए। पापा चुपचाप कार में बैठ गए। मैं पूछता ही रह गया, पापा आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं, आपने ही कहा था कि आप मुझे साथ लेकर चलेंगे। रो रहे थे पापा, रो रहा था मैं। मम्मी अंदर से निकल कर आई और गोद में उठाकर इतना ही कहा, खूब पढ़ना, मामा मामी का कहना मानना, मोनू के साथ अच्छे से रहना। यह मेरी माँ थी शालू, माँ जिन्हें दुनिया ममता की साकार मूर्ति कहती है, माँ जो त्यागमयी होती है, वही मेरी माँ कार में बैठी और कार चलती। मैं दूर जाती कार को देखता रहा, धूल के उड़ते गुबार को देखता रहा। उस धूल में मैं अपने और पापा के सपनों को उड़ता देखता रहा। बहुत देर तक वहीं खड़ा देखता रहा। लग रहा था पापा वापस आएंगे, वो मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। उन्हें पता है कि मामा मुझसे कितनी नफरत करते हैं, मामी भी भेदभाव करती हैं। मन की अथाह गहराई से मुझे रोना आ रहा था। पापा पापा करके मैं रोता रहा। शाम को मामा के पास फोन आया, पापा के सर की नस फट गई और वो नहीं रहे। मात्र 13 दिन में मेरे अपने मुझे प्यार करने वाले दोनों चले गए। मैं मामा के साथ शहर गया। मुझे अपने साथ शहर ले जाने वाले पापा मेरी पहुंच से कितनी दूर चले गए, कितनी दूर। मुझे मम्मी से घृणा हो गई। मामा के साथ मैं वापस नफरत की दुनिया में लौट आया। सबसे पहले मामा ने मामी की नौकरी छुड़वा दी। कहा, मोनू और श्यामल को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, वो मेरी माँ से ज्यादा अच्छी लगी मुझे। उन्होंने तन नहीं सजाए,
हम में भी नहीं, सभी बच्चों

0: तो हमें संस्कार और सुविचारों का बीजारोपण किया, संघर्ष में जीना सिखाया। मामा भी प्यार करने लगे। माँ के पास तथाकथित एक उच्च वर्ग का समाज है, जहां तन के सौंदर्य को ही सुंदर माना जाता है। पर शालू, मामी ने ही मेरे अंदर मम्मी के लिए आदर भाव पैदा किया। मामी के पास पूरे गांव के प्यार का धन है, समाज में इज्जत का धन है। मोनू के पास अमूल्य चीज थी, माँ का प्यार। मेरे पास तो वही नहीं था, थी तो बस नानी और पापा की यादें। पापा ने कहा था मैं इंजीनियर बनूंगा। शुरू शुरू में खूब रोता, रात को अकेले कमरे में डर लगता, नींद नहीं आती। जब मुझे माँ की जरूरत थी तब इन्हें पार्लर से फुर्सत नहीं थी। सारा जीवन अपना और दूसरों का तन संवारती रही, कभी मन संवारने की कोशिश ही नहीं की। अब जब बाहरी सौंदर्य से उब गई तब शायद इनके अंदर ममता का सोता फूटा। पर शालू, मैं अपनी कहानी दोहराने नहीं दूंगा। मैं पापा नहीं हूं जो चुप रह जाऊंगा। मुन्ना हमारा बच्चा है, हम दोनों का, वह कहीं नहीं जाएगा। श्यामल रो रहा था। शालमली देख रही थी पति के उस रूप को जिसमें दर्द का दरिया अनवरत बह रहा था। वह सोच रही थी वास्तव में एक बच्चे को माँ की कितनी जरूरत होती है। जरूरत होती है माँ के प्यार की। नारी का सबसे महान रूप होता है माँ का। मैं माँ हूं अपने मुन्ना की, उसे भरपूर प्यार दूंगी, संस्कार दूंगी, नेक इंसान बनाने का बीजारोपण करूंगी। मैं पार्लर बंद कर दूंगी, मुन्ना की देखभाल ज्यादा जरूरी है। यही सब सोचते सोचते उसने श्यामल के उन्नत ललाट पर गहरा सा ममता से परिपूर्ण चुंबन जड़ दिया। श्यामल को अच्छा लगा, वातावरण का बोझिलपन कम हो गया। शालमली उठकर माँ के कमरे की ओर जाने लगी। श्यामल ने उसे रोकते हुए कहा, माँ से कहो वो यहीं रह जाएं हमारे पास, माँ का प्यार पाने का पहला हक तो मुझे है। शालमली के कदम द्वार पर ही ठिठक गए। अंदर माँ मुन्ना को बेतहाशा प्यार कर रही थी। मेरी श्यामल, मेरे बच्चे, मेरे। अचानक श्यामल माँ के सामने आकर खड़ा हो गया। माँ जीवन में पहली बार बेटे से लिपट कर रो रही थी और उसे प्यार कर रही थी। प्यार, 30 साल का प्यार। श्यामल की आंखें भी सूखी न थी।
1: अभी आप सुन रहे थे साहित्य सुधा के अंतर्गत कहानी पीड़ा। कहानीकार थी डॉक्टर सुषमा चौहान।

हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इसे हम रिले करेंगे।

0: Çak abi şey.
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है, अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: जब आसमान से आग बरसती है और नदियां रास्ता भूल जाती हैं, जब धरती की छाती प्यास से चटकने लगती है और समंदर की लहरों का मिजाज पूरी दुनिया का भूगोल बदलने लगता है, तब जन्म लेता है एक नाम।

0: एल नीनो। ये सिर्फ मौसम का एक चक्र नहीं है, ये इम्तिहान है हमारी धरती का, हमारी फसलों का और हमारी थाली का। आज जब ग्लोबल वार्मिंग के साए में खेती का भविष्य धुंधला रहा है, तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे अन्नदाता किसान इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या हमारी कृषि प्रणाली में वो लचीलापन, वो क्लाइमेट रेजिलियंस है जो इस महासंकट का सामना कर सके? इन्हीं सवालों पर आधारित है आज आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं दो बड़े विशेषज्ञ, मौसम के हर परिवर्तन पर पैनी नजर रखने वाले मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा और देश की मिट्टी और किसानों की नब्ज पहचानने वाले जाने माने कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
0: आनंद जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं और हमारे श्रोताओं और किसानों के लिए आसान भाषा में अगर आप समझाएं कि एल नीनो वास्तव में होता क्या है और प्रशांत महासागर में होने वाली ये हलचल भारत के मॉनसून को किस तरह प्रभावित करती है।
1: एल नीनो का बेसिकली क्या है कि जो आपका पेरू है, पेरू के जो तट है वहां पर सामान्यतः जो सी का, जो समुद्र का तापमान होता है सरफेस का, वो सामान्यतः ठंडा रहता है। बट कई बार ऐसा होता है कि जो आपके ट्रेड विंड्स होती हैं, जो कि यहाँ के जो सरफेस वाटर को पेरू के तट से दूर धकेलती हैं और उसके चलते जो नीचे से पानी आता है समुद्र का, वो इसको ठंडा बनाए रखता है सतह को, और वो नॉर्मल कंडीशंस कहलाती हैं। जब ठंडा है सी सरफेस टेम्परेचर, ला नीना कंडीशंस। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो ट्रेड विंड्स है ये स्लैकन कर जाती है, वीक पड़ जाती है। जब ये वीक हो जाती है तो क्या होता है, जो पानी था वहां जो उसका सी सरफेस टेम्परेचर था थोड़ा ज्यादा था, वो हटा नहीं पाती और वो वहीं खट्टा रह जाता है। तो सामान्यतः जहां समुद्र का सतह का तापमान कम होना चाहिए था वो बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ पैसिफिक सी ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू, यानी सामान्य से ज्यादा हो जाना सी सरफेस का टेम्परेचर का। और जब ये ऐसा होता है तो ये काफी सारे बदलाव लेके आता है कि जहां कहीं बारिश होती है पहले वहां सूखा पड़ने लगता है, और जहां सूखा पड़ता है वहां बारिश होने लग जाती है, तो पूरे पैटर्न को। और दूसरी बात है, ये एक तरह का टेली कनेक्शन है। टेली कनेक्शन का मतलब है कि किसी तरह की समुद्र में या वायुमंडल में होने वाली हलचल एक जगह पे बहुत दूर, हजार किलोमीटर दूर के मौसम को और वहां की प्रेशर को, टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है। तो एक तरह का ये टेली कनेक्शन है और 4 से 5 साल के बीच में आता है, पहले भी आ चुके हैं। और जब जब भी आता है तो जैसे जैसे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो वाइल्ड फायर्स हो जाती हैं, हमारे यहाँ पे भी कभी कभार ये मौसम को, मतलब ये मॉनसून को प्रभावित कर देता है। क्योंकि ऐसे साल भी हुए हैं कि जब एल नीनो था मॉनसून खराब हुआ, और ऐसे साल भी हैं कि एल नीनो था और मॉनसून फिर भी ठीक था। और इस बार चर्चा हो रही है कि भाई ये जो है सुपर एल नीनो होने वाला है, हालांकि अभी जो है जितने ज्यादा तापमान नहीं बढ़े, 1 डिग्री के आसपास ही है तो ये ठीक है, मगर बोला जा रहा है, ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि शायद ये 3 डिग्री तक पार कर जाए। तो ऐसा होता तो ये सुपर एल नीनो होगा, और जब ऐसा हुआ तो शायद ये उसके नेगेटिव इम्पैक्ट मानसून पे ज्यादा होंगे। और इस सबको मौसम विभाग ने, एक बड़ी अच्छी बात है कि क्योंकि आजकल ये सारी प्रिडिक्शन ग्लोबल स्तर पे होती है, WMO इसको वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट करता है, तो ये सब सिग्नल पहले से दे दिए गए थे और मौसम विभाग ने भी इसको फैक्टर इन करा। और उसी को देखते हुए उनकी जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, उन्होंने इस बार कहा कि जो हमारा मॉनसून सीजन में हमें करीब करीब 115 सेंटीमीटर जो वर्षा मिलती है, लॉन्ग टर्म नॉर्मल जिसे कहते हैं, वो उसका सिर्फ 90% हमें मिलने वाला है, यानी कि 10% की कोई कमी जो है मौसम विभाग ने इसको फैक्टर इन कर लिया। इसको देखते हुए ने देखा भी कि थोड़ा सा, हालांकि केरल में 1 तारीख को, जून को आता है मानसून, ये 4 तारीख को आया। हाँ, मुंबई और महाराष्ट्र में और जो आसपास के इलाके, वहां इसकी मानसून ऑनसेट की थोड़ी देरी जरूर हुई और शायद उसने कुछ एरियाज में सोइंग को प्रभावित किया होगा।
0: हरवीर जी, जब मौसम वैज्ञानिक एल नीनो की चेतावनी देते हैं तो एक आम किसान के खेत में इसका सीधा असर किस रूप में देखने को मिलता है? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एल नीनो की चेतावनी के बाद वो कौन कौन सी फसलें होती हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराने लगता है?
2: असल में देखिए, जो खरीफ सीजन है वो हमारे एग्रीकल्चर का एक तो पहला सीजन होता है, जब कृषि का साल शुरुआत हम मानते हैं, खरीफ देन रबी। खरीफ का मानसून पर बहुत बड़ी निर्भरता है। हमारे देश में बहुत बड़ा क्षेत्रफल ऐसा है जो एक फसली है खेती जहां होती है, और वो इसलिए जो वर्षा सिंचित जो क्षेत्र है वो भी खरीफ में कवर होते हैं, और रबी में वहां बहुत जगह ऐसी होती है खेती नहीं होती है। और अब भी हमारा ये देखिए कि करीब 50% के आसपास ही हमारा जो हम कहते हैं कि अश्योर्ड इरिगेशन कवरेज जो है, जहां पर निश्चित रूप से सिंचाई की सुविधाएं जहां पर हैं अस्थायी रूप से, कि बारिश हो या ना हो पानी का इंतजाम फसल के लिए हो जाएगा। ऐसे में करीब करीब 50

0: जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल इसमें है। और ये भी है कि जब इसके बारे में चर्चाएं इस बार शुरू हो गई, पहले से तैयारियां मीटिंग्स हो रही हैं मिनिस्ट्री में, एग्रीकल्चर में एनडीएमए की मीटिंग हो रही है, मिनिस्ट्री में भी हो रही है, तो वो चिन्हित किए गए कौन से ऐसे जिले हैं जहां डिस्ट्रेस बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो जो किसान इंतजार कर रहे थे कि हमें फसल बोनी है जब बारिश होगी, तो उनको इसके लिए दिक्कत हुई। और उसका नतीजा ये है कि देखिए जून में जैसे शर्मा जी ने बताया कि मॉनसून थोड़ा डिले आया, और उसके बाद फिर जब वेस्ट कोस्ट की तरफ आता है तो वो बहुत ही स्लो उसका प्रेशर था, तो बेसिकली वीक जिसे हम कहते हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, और बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया था, एक ब्रेक जिसे कहते हैं वो आ गया। अब उसमें जब ये सब हिस्से आपके जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा और इवन कुछ सेंट्रल है, वहां पर ये जो बारिश पर आधारित जो खेती है उसका काफी बड़ा हिस्सा है, तो अब नतीजा ये हुआ कि वहां पर जो किसान समझता था कि मुझे बुआई करनी है तो वो डिले हो। अभी जो लेटेस्ट डाटा अभी 5 तारीख तक के आए हैं उसमें खरीफ में जो एवरेज हमारा जो सोन एरिया होता है वो करीब 21% से पिछड़ा हुआ है, और इसमें जो मार पड़ी है उन फसलों पर पड़ी है जो थोड़ा सा जिनको मार्जिनल क्रॉप बोलते हैं, कि जो एश्योर्ड इरिगेशन में फार्मर उनको नहीं बोता और ये लगता है कि बारिश होगी तो बो देंगे, जिसमें दालें हैं तिलहन बड़े पैमाने पर है, तो ये जो नुकसान है हमें ये बड़ा है। इसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग तरीके से देखेगी, एग्रीकल्चर अलग तरीके से देखेगा, रिजर्व बैंक अलग तरीके से देखेगा। एक तो पहला तो स्टेप यही है कि एडवाइजरीज जो जारी है कि भाई किस तरीके से कौन सा फसल आपको अभी उगानी चाहिए, क्या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप पे जाना चाहिए, क्या आपको जो कम अवधि की जो फसलें हैं थोड़ा देर से आप बोएं, जून में नहीं बो पाए, जुलाई 15 तक नहीं बो पाए, लेकिन फिर भी आप इस वैरायटी का इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छी उपज ले सकते हैं, या फिर आप फसल चक्र बदल दीजिए, ये फसल इसमें कम बारिश में हो सकती है। तो ये इस तरह की एडवाइजरी पहले स्तर पर किसानों तक पहुंचती है, वो जो समाचार माध्यम है या सरकारी जो माध्यम है उनके जरिए जाता है, आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके जरिए जाता है, तो वो सब एडवाइजरीज उस तरीके से, अब तो तमाम सारा प्राइवेट सेक्टर भी एक्टिव है एग्रीकल्चर में, उनके जरिए भी जाता है। तो ये तो एक तरीके से किसान को सूचना पहुंचाने का काम है कि आप अपना फैसला आप ले सकते हैं इस परिस्थिति में, आपको के लिए क्या उचित फैसला है, तो ये किसान के स्तर पर है और ये सरकार दोनों के बीच में ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन का एक जो फ्लो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, मतलब बारिश नहीं होगी कम होगी तो उसको तो नहीं कर सकते। हाँ, उसको मिटिगेट करने के लिए और कई सारे स्टेप्स जो है जो सरकार लेती है या जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज लेती है वो फिर अगले कदम इसके बाद नेक्स्ट जो अगले स्टेज में शुरू होते हैं।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे और देश के बहुत सारे श्रोता और किसान भी समझना चाहेंगे कि क्या क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, जो दो फैक्टर पिछले 20-25 वर्षों में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्या उनका भी एल नीनो की घटनाओं से सीधा संबंध है? जो डेटा है वो इस बारे में क्या कहानी कहता है?
2: ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज भी है, और एक चीज हमें और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है ना वो इतनी ज्यादा है, और ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ये थोड़ा एडिड प्रेशर है। मैं ये कहूंगा कि सारा नहीं, जो लोग मानते हैं सारा क्लाइमेट चेंज नहीं, 95% तो आपकी क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी इतनी है, मैंने जैसे बताया कि 2002 में कितनी जबरदस्त पूरा जून में बारिश ही नहीं मिली आपको, सो नेचुरल वेरिएबिलिटी हमारी बहुत ज्यादा है, और ऊपर से ये अब एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे ऊपर आ गया है। और लोगों का मानना है कि भाई जिस तरह से कि मतलब एटमॉस्फेयर की वार्मिंग हो रही है, हीट वेव्स हो रही है, वैसे ओशन भी वार्म कर रहे हैं, सो नेचुरली वहां पे भी वार्मिंग होगी तो शायद और एल नीनो स्ट्रांग हो जाए, वो उनका मानना है। बट मेरा फिर भी मानना है कि हमने इससे भी वर्स्ट सिचुएशन को झेला है, तो हमारी यदि तैयारी अच्छी होगी, हमारी वार्निंग अच्छी होगी, जिसे हम कहते हैं ना फोर वॉर्न्ड इज फोर आर्म्ड, आपने वार्निंग पहले से दे दी और आपने तैयारी करी है कंटीजेंसी प्लान की, आप महावीर जी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। हमारी यदि 200 डिस्ट्रिक्ट जो है हमने चिन्हित कर दिए हैं जो कि एग्रीकल्चरली स्ट्रेस प्रोन है,
1: प्रभावित होंगे,
2: वो पहले से चिन्हित है। ICAR के बाद निकरा प्रोजेक्ट है, न्यू इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, वो हमारे पहले से तैयारी है। 2500 के करीब हम लोगों के पास कहते हैं ड्राउट स्ट्रेस रिलेटेड जो है, फ्लड रिलेटेड जो है वेराइटीज हैं जो फ्लड में भी काम कर जाएंगी, ड्राउट हुआ तो ड्राउट में काम कर जाएंगी, और एल नीनो में जरूरी नहीं कि ड्राउट ही होगा, एक्सट्रीम वेदर भी हो जाता है और फ्लडिंग भी हो जाएगी, तो उसकी सब वेराइटीज तैयार है। आपने बड़े अच्छा बताया महावीर जी ने, यदि थोड़ा डिले हो जाएगा, इतना ज्यादा भी डिले नहीं हुआ, और डिले हो गया जहां तो आप 4 महीने की जगह छोटी क्रॉप लगाइए, शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप चले जाइए, और क्रॉप्स भी ऐसी हों जो कि मिलेट टाइप की होती हैं, जिनको कि मतलब कि आपको कहने के मतलब पानी कम चाहिए, यदि 3 हफ्ते ड्राई स्पेल रही तो वो सर्वाइव कर जाती है। और मजे की बात यह है कि आज की डेट में क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप बना हुआ है कृषि मंत्रालय में, और मैं उसका पार्ट था, IMD को काफी सालों मैंने रिप्रेजेंट किया, तो वहां हम लोग ये डिस्कशन होता है कि भाई पिछले हफ्ते ऐसा

समरा अगले हफ्ते ऐसा होने वाला है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट ये है। तो अब सारे एक्सपर्ट बताएंगे फर्टिलाइजर अवेलेबल है, शॉर्ट ड्यूरेशन यदि बोना है तो क्या उसके बीज भी उपलब्ध है कि नहीं है। तो ये सब तैयारी रहती है, फर्टिलाइजर पैसे सब कुछ सबकी तैयारी, पानी है रिजर्वायर में कितना है। एक समय आ गया था कि मुंबई में पीने का पानी की किल्लत होने वाली थी, मगर वो और एक डेफिसिट 20-21% पहुंच गया था मानसून का, वो शायद अब 10 के आसपास आ गया है, तो वो भी काफी कवरेज हुई है। तो मगर मेरा कहने मतलब है कि तैयारी सरकार की अच्छी है, आपके पास हर तरह की वैरायटी है, और साथ साथ जो मौसम पे आधारित खेती करनी है, जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न हो वो हमेशा ऐसे होने चाहिए कि जहाँ का एग्रो क्लाइमेट है अकॉर्डिंग नहीं है। ऐसा ना हो जैसे कि शुगर केन महाराष्ट्र लगा रहा है सेमी एरिड एरिया है, पैडी लगा रहा है कौन पंजाब सेमी एरिड एरिया, ये क्रॉप ह्यूमिड एरिया की क्रॉप है क्योंकि वहां पानी फ्री मिल रहा है उनको, बिजली फ्री है, तो वो इसलिए वो लगा रहे हैं।

0: भी काफी कवर हुई है। तो मगर मेरा कहने मतलब है कि तैयारी सरकार की अच्छी है, आपके पास हर तरह की वैरायटी है, और साथ साथ जो मौसम पे आधारित खेती करनी है, जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न हो वो हमेशा ऐसे होने चाहिए कि जहाँ का एग्रो क्लाइमेट है अकॉर्डिंगली, ऐसा ना हो जैसे कि शुगर केन महाराष्ट्र लगा रहा है सेमी एरिड एरिया
1: जी,
0: पैडी लगा रहा है कौन पंजाब सेमी एरिड एरिया, ये क्रॉप ह्यूमिड एरिया की क्रॉप है क्योंकि वहां पानी फ्री मिल रहा है उनको, बिजली फ्री है, तो वो इसलिए वो लगा रहे हैं और उसको प्राइस अच्छा मिलता है। मगर ऐसी जगहों पे लगाने हैं मिलेट्स, एक चीज। और दूसरी बात जो मौसम विभाग समय समय पे बताता है आपको, गुड वेदर प्रैक्टिसेस एंड बैड वेदर प्रैक्टिसेस। यदि आपका पानी बरस रहा है तो भैया इस समय हार्वेस्टिंग कर लो ना, बरसात से पहले से आपके सारे तालाब वालाब साफ करके उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है हमको, तो वो करके तैयारी रखें अपनी। अच्छा, फिर उसके साथ ये भी करें, बैड वेदर है जब बताया कि भाई अलिनो है, इस बार मॉनसून थोड़ा खराब होने का चांसेस है, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: तो ये गुड वेदर कोड बैड वेदर कोड बिल्कुल बनी पड़ी है, तो उसके लिए कृषि मंत्रालय, मौसम विभाग, एनडीए में सारे जो है बिल्कुल आपस में उसमें रहते हैं, और समय समय पे क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप मीटिंग्स होके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और सबको ये जानकारी दी जा रही है इस समय क्या करना है आपको। और सबसे बड़ी उसमें बात मैं कहूंगा कि सरकारों को थोड़ा सा ये मेरे को और स्ट्रेस ये देना पड़ेगा, हमें इरीगेशन जो है ना, कैनाल इरीगेशन और दूसरे इरीगेशन को और बढ़ाना है। देखिए, जो स्टेट्स पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जिनमें इरीगेशन फैसिलिटी है या फिर ग्राउंड वाटर उनको मिल जाता है, वहां कभी फसल नहीं खराब होती। आप देख लीजिए वहां पे यदि बारिश कम हो जाए ना, बल्कि फसल और अच्छी होती है क्योंकि धूप अच्छी मिल रही है, बीमारी नहीं होती वहां पर, फंगस नहीं आती है, और पानी जब चाहिए वो निकाल के सोइंग कर देते हैं। और ये भी ध्यान रख लीजिए, क्रॉप को जैसे मान लीजिए 4 महीने की है तो 4 महीने पानी नहीं चाहिए
1: जी,
0: सिर्फ 4 और 5 क्रिटिकल स्टेजेस होती है, उन 5 क्रिटिकल स्टेजेस पे ही पानी चाहिए। और कई बार ऐसा भी देखा गया है वर्षा तो सामान्य है, सामान्य से ज्यादा है, और वो क्या हुआ कि महीने के शुरू में मिल गई, एंड में मिल गई, और बीच में 3 हफ्ते नहीं मिली,
1: जब जरूरत थी तो नहीं मिली,
0: नहीं मिली। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब मौसम विभाग आज की इसमें आपको फोरकास्ट तो दे रहा है कि भाई मानसून की वर्षा कम होगी, पर मेरा ये मानना है ऐसा भी तो हो सकता है कि 90% के 85 भी हो गई, और 85 भी इतनी है कि आपकी जो फसलें ज्यादातर जो धान और शुगरकेन को छोड़ दीजिए, बाकी को सिर्फ 500 मिलीमीटर वर्षा चाहिए, और यदि आपके समय समय पे मिल गई ये वर्षा तो आपकी फसल निकल जाएगी। मगर उसके साथ साथ किसानों को क्या करना है, किसान क्या कर रहा है, उसके पास एक लाइफ सेविंग इरीगेशन भी नहीं है तो वो तो जुआ खेल रहा है। एटलीस्ट 1 या 2 लाइफ सेविंग इरीगेशन तो रखे, जैसे ही 3 हफ्ते का पीरियड आया नहीं मिली वर्षा तो एक लाइफ सेविंग इरीगेशन यूज कर लिया, थोड़ी देर बाद उसको जरूर वर्षा मिलेगी। कभी ऐसा नहीं होता कि आपको 5 हफ्ते वर्षा मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं होता कभी भी। तो ये तैयारी हमारी होगी तो हम किसी भी सिचुएशन को झेल सकते हैं, इससे भी वर्स्ट सिचुएशन हमने झेल ली है और इसको भी हम अच्छे से झेलेंगे।
1: हरवीर जी, जलवायु अनुकूलन क्षमता यानी क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करते हैं, और आज जो हमारा चर्चा का विषय का टॉपिक है वो भी इसी पर आधारित है। सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे ये होता क्या है, और व्यवहारिक रूप से किसान अपने खेत को जलवायु अनुकूल कैसे बना सकता है।
2: जो वेदर का जो एक पैटर्न है और क्लाइमेट, वो उसमें बड़े तेजी से बदलाव आ रहे हैं। एक तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, एक्सट्रीम हीट, सडनली वेरी हैवी रेनफॉल और ड्राई स्पेल, तो ये जो इंसिडेंट्स है ये सीधा क्लाइमेट चेंज का इंडिकेशन है, और उसी से ये होता है जब अनयूजुअल इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब इसमें एक तो पक्ष ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं कि हम क्लाइमेट रिजिलिएंट क्रॉप, यानी कि ऐसी प्रजातियां जिसमें ऐसा लचीलापन है सर्वाइव करने के लिए कि अगर दोनों चीजों में, फ्लड में भी सर्वाइव कर जाए उस तरह की भी किस्में, और अगर उसको स्ट्रेस आता है उसमें भी वो सर्वाइव कर जाए कम पानी में, कम न्यूट्रिशन में। ये इस तरह की प्रजातियां वैसे तो बहुत बड़े पैमाने पर ICAR और हमारे जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने डेवलप की है, बट इसमें भी ये देखना पड़ेगा कि वो किसानों की पहुंच में कितना है। आप कहें कि हमने 2200 वेराइटी रिलीज कर दी, बट अगर किसान को यही नहीं पता कि इनमें से कौन सी वेराइटी ऐसी है जो आज की परिस्थिति में मेरे लिए उपयोगी है, और उससे भी आगे क्या उसका सीड उसे अवेलेबल है, वो कहाँ से अवेलेबल है, वो क्या किसी पब्लिक सिस्टम का जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन हो या कुछ कोऑपरेटिव का संस्थान है वो हो, या फिर प्राइवेट जो कंपनीज है उनके जरिए या उस तरीके से उपलब्ध है क्या, और उसका एग्जैक्टली देखिए होता क्या है कि अभी भी ये टेंडेंसी है, और इसमें क्योंकि जब आप इनकम पैरिटी की बात करते हैं क्रॉप की, अल्टीमेटली वो इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो बिजनेस, किसान के लिए वो एक व्यवसाय है अपने सर्वाइवल का, अपने वेलबींग का। शर्मा जी कह रहे हैं कि पंजाब में जो है आपको धान बहुत ज्यादा नहीं उगाना चाहिए, बासमती उगाना चाहिए, गैर बासमती में हाई वैल्यू क्रॉप है, गैर बासमती आप ईस्टर्न इंडिया के लिए छोड़ दीजिए, वहां बहुत पानी है। लेकिन अब क्या है कि अगर वो वहां पर कॉटन ग्रो करता है, कॉटन में कम पानी चाहिए, लेकिन क्या है कि

0: पिछले 10 साल 15 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कॉटन की क्रॉप बहुत वल्नरेबल हो गई है पेस्ट एंड डिजीज के लिए. हम नई किस्में नहीं ला पा रहे हैं जो किसान को एश्योर करें कि इस बार इसको लगाइए, पानी भी बचेगा, आपकी आमदनी भी ज्यादा होगी. तो जब तक आप उसको एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देंगे फार्मर को, और उसका पहला प्रायोरिटी है मेरी आमदनी कैसे हो. जैसे मिलेट्स की बात कही है, अगर आप मिलेट ग्रो करेंगे और उसके लिए मार्केट नहीं होगा, उसके लिए प्रोक्यूरमेंट का सिस्टम नहीं होगा, हमारे जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं बड़े पैमाने पर उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, तो फिर वो मिलेट के लिए उसको दाम कैसे मिलेगा. ये मल्टीपल चीज, जैसे मैंने कहा दालों का प्रॉब्लम है बट फिर भी नहीं ग्रो कर पा रहे फार्मर्स. तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का आता है, और बहुत सारी ऐसी क्रॉप हमारी है जहां पर अभी तक हमें टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा है डिस्पाइट वर्ल्ड्स मोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च सिस्टम इन एग्रीकल्चर. तो अब उसमें हमारे साइंटिस्ट की भी जिम्मेदारी बनती है. देखिए किसान साइंटिस्ट नहीं हो सकता. दूसरे हमारा जो एक्सटेंशन सिस्टम है, एक्सटेंशन का जो बड़ा रोल है वो बहुत बड़ा रोल है. एक्सटेंशन सिस्टम को लगातार रिफॉर्म करने की बात हो रही है. इस बजट में भी विस्तार की बात आई है. AI की बात हम लोग कर रहे हैं कि कैसे किसानों को बेहतर, ये सारा एक्सटेंशन वर्क है, उसको कैसे एक बेहतर जानकारी उपलब्ध हो. और ये राज्यों का विषय ज्यादा है एग्रीकल्चर, तो जो राज्य सरकारें हैं उनकी भूमिका इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है. और वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है या जो बाकी जो लोग हैं जो एक्सटेंशन में काम करते हैं, उनको मेरे ख्याल से ज्यादा सशक्त करने की और उनका नंबर बढ़ाने की जरूरत है. तो ये तैयारियां तभी किसान समझ पाएगा. दूसरे क्या है कि जैसे हमारा रेनफेड एरिया अथॉरिटी है वो वाटरशेड सिस्टम चलाता है, और उसके लिए एक अच्छा खासा बजट है. हमारा जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसमें वाटरशेड के लिए, तो ये उन इलाकों के लिए है जो ये ड्राउट प्रोन इलाके हैं. जैसे आपने कहा कि अगर बारिश नहीं हुई और एक सिंचाई भी उस वक्त उसको मिल गई तो क्रॉप सर्वाइव कर जाएगी. तो वहां पर जो वाटर बॉडीज हैं या पोन्ड्स हैं या लेक्स हैं उनमें चेक डैम बना के और पानी को रोका जाता है, और फिर वो इक्विटेबली जो फार्मर्स हैं वहां के, बहुत जगह तो क्या है कि फार्मर्स के अपने कलेक्टिव्स और यूनियंस बनी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, वो आपस में तय कर लेते हैं प्रायोरिटी के आधार पर कब हमें इसका इस्तेमाल करना है. तो जो इस तरीके जो स्टेप्स हैं वो जिस तरह की परिस्थिति राउट के टाइम पे आती है उसमें बहुत कारगर होते हैं, क्योंकि आपकी फसल को एक पानी चाहिए और आपके पास ऐसा ट्यूबवेल नहीं है, बोरवेल नहीं है कि आप इमीडिएटली सिंचाई कर सके. आप छोटे किसान हैं, हमारे 89% जो फार्मर हैं वो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट की जो कैपेसिटी है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत सीमित है. तो ऐसे में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए काम करता है. हाँ ये है कि पिछले कुछ वर्षों में कई चीजें हुई हैं, जैसे कि सोलर पंप का हुआ है, फिर हमने माइक्रो इरिगेशन पे फोकस किया है, माइनर इरिगेशन पे फोकस किया, वो सब इस तरीके के इलाकों के लिए है. और आप जो है कि कम पानी में टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रिप है या स्प्रिंकलर इरिगेशन है, राजस्थान में बड़े पैमाने पर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल होता है, फ्लड इरिगेशन नहीं होता हरियाणा पंजाब वेस्टर्न यूपी की तरह, क्योंकि उनको पता है कि पानी की एक एक बूंद की वैल्यू क्या है. तो ये जो चीजें हैं ये सारा सिस्टम आपको इस तरह की परिस्थिति से लड़ने में मदद करता है. और इसमें ये भी बात है कि जैसे मैंने कहा कि किसानों को सही जानकारी, प्रशिक्षण और जो अवेलेबिलिटी है, वो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी हो, फर्टिलाइजर की जब हम बात करते हैं, या बीमारी आ जाए तो जो एग्रोकेमिकल्स हैं उनकी हम बात करते हैं, और पानी. लेकिन पानी सबसे किसी भी फसल को आगे तक ले जाने के लिए, उसको तैयारी और उसके उत्पादन के लिए, वाटर इज द फर्स्ट रिसोर्स और फॉरमोस्ट, सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है वो पानी है.
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अगर हम आकाशवाणी की बात करें तो आकाशवाणी की लोकप्रियता इसलिए भी है क्योंकि जहां सुविधाएं नहीं है वहां लोग आकाशवाणी को सुनते हैं. मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, जो AI के थ्रू ऐप को भी समझते हैं, मौसम वैज्ञानिक जो सूचनाएं देते हैं वो भी उन तक पहुंच रही है. जैसा कि हरवीर जी ने कहा कि 89% के आसपास छोटे किसान हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अब भी तकनीक से दूर है. वहां तक मौसम विभाग मौसम की चेतावनी जानकारी पहुंचाने के लिए क्या कुछ नए कार्यक्रम शुरू कर रहा है या किया है, उसके बारे में थोड़े हमारे श्रोताओं को जानकारी दें.
2: बिल्कुल, इसलिए हमारे मौसम विभाग ने एक ऐप बनाया है मेघदूत. उस मेघदूत में जो है मौसम की पूर्वानुमान होता है और मौसम पे आधारित कृषि सलाह होती है. क्योंकि देखिए दो तरह की सलाह होती है, एक होता है पैकेज एंड प्रैक्टिस ऑफ खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, कि इतनी खाद लगाना है, इतना इरिगेशन लगाना, वो एक नॉर्मल एडवाइजरी है. पर हम जो देते हैं एडवाइजरी वो है वेदर बेस्ड एडवाइजरी. मौसम पे आधारित, यानी कि बारिश आने वाली है तो भैया इरिगेशन पोस्टपोन कर दीजिए, आपका पानी बच जाएगा, बिजली बच गई। मान लीजिए आपकी फसल में बीमारी लगी है, आपको कहते हैं स्प्रे करना है केमिकल, बारिश आने वाली है। मैं कहूँगा नहीं, अभी पोस्टपोन करिए, बारिश की बात करना, नहीं तो आपका केमिकल बह जाएगा और आपका पैसा भी बेच जाएगा और वो जाके ग्राउंड वाटर

0: अगर बारिश कम होगी तो किसान की लागत बढ़ती है क्योंकि उसको सिंचाई के ऊपर अधिक खर्च करना पड़ता है, तो ऐसे में क्या उनको सिंचाई के लिए कुछ आर्थिक मदद स्पेशली उस टाइम के लिए दी जा सकती है? पहले भी दी जाती रही है, डीजल वगैरह के ऊपर सब्सिडी दी जाती रही है, और मेरा मानना है कि सरकार ने अब समझ लिया है और काफी कुछ निर्भर करेगा, जैसे शर्मा जी ने बताया कि मॉनसून का क्या होता है, कि मॉनसून अगर 10% कम भी रहता है उसकी अहमियत क्या है, कि उसका जो हमारा मॉनसून का पीरियड है जून टू सितंबर, उस पूरी अवधि में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है। अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है तो कोई मुश्किल नहीं है, और अगर पता लगा आपको जुलाई में बहुत बारिश हो गई उसके बाद अगस्त में आपके पास बारिश नहीं है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी और समय के हिसाब से जो हमारा विभाग है, कृषि विभाग है या सरकारों के जो सिंचाई विभाग है और जो ये तमाम सारे इन सबको विभागों को आपस में तालमेल बैठा कर कि किसान को कहाँ जरूरत है वहाँ उसको मदद करने की जरूरत है। और किसान भी अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे अब बहुत चीजें बदली हैं, बदलाव कृषि में भी आया है, वो समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, चीजों को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं और फैसले भी बेहतर तरीके से ले सकते हैं, तो एक अच्छा तालमेल बैठा है तो इस मुश्किल को पार कर सकते हैं।
1: जी हाँ, मौसम बदलेगा, चुनौतियां आएंगी और एलनीनो जैसी महाशक्तियां हमारी तैयारियों को परखेंगी भी, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत के किसान ने कभी हारना नहीं सीखा। विज्ञान की सटीक भविष्यवाणियां और कृषि के आधुनिक तौर तरीके अगर हमारे अनुभव के साथ मिल जाएं तो सूखी मिट्टी से भी सोना उपजाया जा सकता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम मौसम के बदलावों से डरे नहीं बल्कि अपनी रणनीति से उसे मात दें। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए हरवीर जी आपका, आनंद जी आपका बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: हम अपने तमाम श्रोताओं से बस यही कहना चाहते हैं कि बदलते दौर में सजग रहिए, वैज्ञानिक सलाह अपनाइए और अपनी खेती को सुरक्षित बनाइए। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।
5: अभी आप सुन रहे थे चर्चा का विषय है, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इसे हमने रिले किया। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। सबसे पहले आइए सुनते हैं बसंत काबरा से सरोद वादन। राग है भैरव, ताल है छाप।

अभी आप सुन रहे थे बसंत काबरा से सरोद वादन, राग था भैरव, ताल था छाप। आइए अब सुनते हैं कविता चक्रवर्ती से सितार वादन। तबले पर संगत कर रहे हैं रंजन द्वारका, राग है बिहाग, ताल है तीन ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे कविता चक्रवर्ती से सितार वादन। तबले पर संगत कर रहे थे रंजन द्वारका। राग था बिहाग, ताल था तीन ताल। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पहले हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इसे हम रिले करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबावो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा

अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रणब ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्वार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सभा अल खालिद अल सभा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रूपये की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में आज 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उन्होंने सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच बेहतर सहयोग पर बल दिया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्त्युक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक ने जैस्मिन पाउलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।